0: वो प्रभु संबित शिक्षा कहलाती। वेद के वाक्यों में हम जो है नू और नच कर सकते, जैसा वेद कहता है वैसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें नू नच करने की सामर्थ्य, उहा पोह करने की सामर्थ्य नहीं है। तो वेद से होने वाली जो वैदिक शिक्षा है वो है प्रभु संबित शिक्षा। अच्छा, दूसरी शिक्षा बतलाई मित्र संबित शिक्षा। मित्र संबित शिक्षा क्या है? तो आप जैसे जानते हो दो मित्र हैं, तो एक मित्र संकल्प लेकर के कुछ कहता है तो उसका मित्र जो है देखता है कि इसमें कुछ न्यूनता है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए वो उसको प्रेरित करता, वो उसमें प्रश्न भी करता, तर्क भी करता कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से मित्र क्या करता है, संशोधन करता है, परिवर्धन करने की कोशिश करता है और दोनों के वाद प्रतिवाद के द्वारा एक सिद्धांत निकल करके सामने आता है। इसे कहते हैं मित्र संबित शिक्षा। तो जितने भी हमारी स्मृतियां हैं या स्मृति ग्रंथ हैं वो सब क्या है, वो मित्र संबित उपदेश। स्मृतियों को मित्र संबित उपदेश या मित्र संबित शिक्षा का, इसलिए आप गीता में देखते है ना क्या है, वहां प्रश्न भी उठाया गया और उसका उत्तर भी दिया गया और प्रश्न उत्तर पूर्वक एक सिद्धांत को निकाल करके दिया और समाधान भी किया गया, संवर्धन परिवर्धन आदि देखा। जितनी भी श्रुतियां हैं उनमें सब ये चर्चा की। तो ये तो हो गया मित्र संबित उपदेश, परस्पर का संवाद है जहां। और तीसरी शिक्षा जो हमारे यहां बतलाई गई वह है कांता संबित शिक्षा। ये कांता संबित शिक्षा क्या, तो कांता शब्द का अर्थ आप जानते हो है ना, ऐसे तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार जो अर्थ है उसी को ले। तो कांता शब्द का अर्थ है सती साध्वी जो अपनी धर्म पत्नी, उसे क्या कहते हो, कांता शब्द से कहते हो। तो कांता संबित शिक्षा क्या है, तो जैसे आप जो है कयादु के प्रसंग को सुनते हो है ना, हिरण्यकशिपु को एक है न्यायगत संकल्प कराने में जो है सहयोगी थी तो कौन थी, कयादु थी। तो सती साध्वी स्त्री क्या करती है, यदि उसका पति अन्याय के मार्ग में, अन्याय के संकल्प में जा रहा है तो उसे न्याय पर लाने के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए वह क्या करती है, पहले वह उसकी सेवा करती, जैसे कयादु ने सेवा, और सेवा के द्वारा उसे प्रसन्न करती। प्रसन्न करने का मतलब उसे अपनी तरफ अभिमुख करना, और जब अभिमुख कर लेती है तो जो सिद्धांत है, जो सत्य है वो उसके सामने प्रस्तुत करती। और जब व्यक्ति अभिमुख होता है तो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता। तो जितने भी इतिहास, पुराण, काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि और साहित्य जितने भी ग्रंथ हैं, नाटक आदि भी, ये सब क्या है, ये कांता संबित शिक्षा है। क्योंकि हम जब नाटक आदि करते हैं या जो है हम आख्यान उपाख्यान इतिहास की चर्चा करते हैं तो वह सरलता से हमारी समझ में आ जाती है और व्यक्ति उधर अभिमुख हो जाता है। तो सारे शास्त्रों में यह नियम है कि उनके द्वारा वहीं पर सिद्धांत भी दे दिया जाता। तो आख्यान केवल आख्यान के लिए नहीं, आख्यान किस लिए है, अभिमुखीकरण करने के लिए और फिर जो शास्त्र का सिद्धांत है वो समझाने के लिए, उस सिद्धांत को दे देते हैं। तो ये जितने ग्रंथ हैं वो सब क्या है, कांता संबित शिक्षा। तो अब श्रुति है तो ये तो वेद से होने वाली, लेकिन इसमें भी उपनिषदों को थोड़ा सरस बनाने के लिए इसमें प्रश्न उत्तर की चर्चा थोड़ी कर दी गई। तो अब वेद तो है वो सीधी सीधी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए जो है वो हम उसमें हमारे अंदर संशय हो जाता तो वो बना रहता, जल्दी निवृत्त नहीं हो पाता, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन जहां मित्रता संबंधी बात आ जाती वहां समझ में आ जाती, और जहां पुराण इतिहास को लेकर के बात आ जाती तो जल्दी समझ में आ जाती। तो जितने भी आख्यान आदि इतिहास प्रहण आदि के उदाहरण के ही रूप में दिए जाते हैं, और उदाहरण एक अंश की पुष्टि करता है, सर्वांश की पुष्टि नहीं करता, एक अंश की पुष्टि करता। तो यहां पर भी उसी को लेकर के चर्चा करें। यहां पर जो शब्द बतलाया अर्यमा, तो अर्यमा शब्द का अर्थ बतला दिया श्रेष्ठ मन कहो, श्रेष्ठ मन या प्रागतिक मन या उन्नत मन या ज्ञान संपन्न मन, ज्ञान वाले संकल्प वाला मन, उसे कहते हैं अर्यमा। ऐसे अर्यमा से प्रार्थना की तो उससे प्रार्थना करोगे तो वो ज्ञान संस्कृतता है सुशिक्षितता तुम्हारे में आएगी, जिसके द्वारा तुम सद असत का विवेक करने में समर्थ होगे, न्याय के मार्ग को जानने में समर्थ होगे, अर्थात सुख के मार्ग को जानने में समर्थ होगे। तो ऐसा संकेत किया, तो ऐसे उससे प्रश्न किया, तो यहां पर संकेत अब ये कर रहे ये कब आता है, तो जब हम राग द्वेष आदि से रहित जो गीता की चर्चा की, मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन में शुद्ध संकल्प होता है, शुद्ध संकल्प से बुद्धि परिनिष्ठित होती है, बुद्धि परिनिष्ठित होती है तो उसमें जो है एक सद तत्व की ही जो है निश्चयता आती है, मैंने विवेक आता उसमें, और जब विवेक आता है ऐसे बुद्धि के विवेक से हमें वह बल प्राप्त होता है कि जिससे हम अपने कल्याण को प्राप्त। उदाहरण के लिए इसी संबंध में उदाहरण, एक टापू, उस टापू पर जो जनता रहती थी उसका एक राजा भी था, उस टापू पर रहने वाली जनता की प्रणाली कुछ विलक्षण थी, क्योंकि राजाओं के यहां जैसे राजा हुआ तो उसकी आगे संतति आने वाली क्रम से राजा बना दी जाती, प्रजातंत्र में जो है चयन की प्रक्रिया होती, लेकिन वहां पर राजतंत्र भी नहीं था, एक तरह से प्रजातंत्र तो था लेकिन उसकी चयन प्रक्रिया बड़ी विलक्षण थी। वो चयन प्रक्रिया क्या थी, वहां की जनता मिलकर की और राजा का चयन करती थी, लेकिन चयन करती थी लेकिन उनका नियम क्या था, उनका नियम बड़ा विलक्षण था, उस टापू पर एक वर्ष से अधिक कोई राजा राज्य नहीं करता, वो सारी जनता एक वर्ष तक राजा बनाती थी और उसको जो है परिवर्तित कर देती थी और दूसरा राजा बिठा देती, लेकिन एक और विलक्षण बात थी, वो विलक्षण बात क्या थी, जिसे एक वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, एक वर्ष तक तो वो अपना राज्य चलाता था, उससे कोई कुछ नहीं कहता था, उसकी बातों को स्वीकार करते थे, लेकिन एक वर्ष के बाद वह जनता जब दूसरे राजा का चयन करती थी तो प्रक्रिया उनकी क्या थी, वो जो जिस राजा को उन्होंने पहले बनाया था उसे पालकी पर बिठाते थे और पालकी पर बिठा करके सभी लोग मिलकर के, और जिसे नया राजा बनाते थे उसे भी साथ ले लेते थे और ले जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचते, और समुद्र के किनारे पहुंच करके फिर क्या करते थे, उससे जो भी चाबियां या जो भी वही खाते आदि थे राज्य का जो भी तंत्र था वो जिसे नया राजा बनाते थे उसे दिलवा देते थे, और उसको नौका में बैठा करके और गहरे जल में ले जाते थे, जहां जल गहरा होता था वहां ले जाते थे और वहां ले जा करके उसको वहीं गहरे जल में डुबा देते थे, और गहरे जल में डुबा देते थे और उसे किसी को निकालने भी नहीं देते थे, और उसको वहीं छोड़, जब निकालने नहीं दोगे तो किसका क्या होगा, और आकर के जो नया राजा था तो शंखवेरी नादाद के साथ में उसे जो है लाते थे और उसे सिंहासन पर अभिषिक्त कर देते थे, ये प्रक्रिया थी। अब जो है वहां पर जो है जब राजा बनने की बात आती थी तो कोई राजा बनना नहीं चाहता, और आपस में झगड़ा होता था तो लोग भी गाली देते थे, क्या देते, किसे राजा बना दिया जाए, ये गाली भी देते। अब ये प्रक्रिया वहां चलती थी, ऐसा चलता रहा। एक बार एक जो है राजा का चयन करने के लिए उन्होंने देखा किसको बनाया जाए, तो कुछ वर्षों पहले ही उस टापू पर वह व्यक्ति आया था जिसका नाम था बुध सिंह। उस बुध सिंह को उन्होंने चयन किया, जैसा नाम था वैसे गुण वाला था, है ना, बोध से संपन्न था, ये नाम भी उसका था बुध सिंह, अर्थात बुद्धिमान था, तो परिवार वाले जो है उसको बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जब उसको उस घर से उठाया गया तो सारा परिवार दुखी हो गया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம சைவம் டாட் ஆர்கின் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள். பாடல் திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளி செய்த தோருடைய செவியன். பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Veda Patah ऋग्वेद जटपाठः.
2: ॐ अयं देवाय देवायाय मयं देवाय देवाय जन्मने जन्मने देवाय देवाय जन्मने जन्मने स्तोम स्तोमो जन्मने जन्मने स्तोमाः स्तोमो विप्रेभिर्विप्रेभिस्तोम स्तोमो विप्रेभिः विप्रेभिरासया सया विप्रेभिर्विप्रेभिरासया आसयेत्यासया अकारिरत्नधातमो रत्नधातमो कार्यकारिरत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा वचो युजात तक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजात तक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा मनसा हरि हरि मनसा मनसा हरि हरि इति हरि शमीभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमीभिश्शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशताशत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत तक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् तक्षन् तक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् दक्षम् धेनुम् धेनुम् दक्षम् दक्षम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवाना पितरा पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवाः ऋभवो विष्टी विष्ट्या ऋभव ऋभवो विष्टी विष्ट्यक्रता कृत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सन् संवाः वोमदासो मदासो वो वोमदासः मदासो अग्मतागमतमदासो मदासो अग्मत अग्मतेन्द्रेणेन्द्रेणाग्मतागमतेन्द्रेण इन्द्रेण च चेन्द्रेणेन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वता च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च चादित्येभिरादित्येभिश्च च राजभिराजभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उतत्यन्त्यमुतोतत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्त्यन्त्यञ्चमसम् चमसन्नवन्नवम् चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुस्त्वष्टुर्नवन्नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य त्वष्टुस्त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतम् देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम् अकर्तचतुरश्चतुरो कर्ताकर्तचतुराः चतुरः पुनः पुनश्चतुरश्चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनो नस्ते तेनाः नो रत्नानि रत्नानि नो नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तन रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तन त्रिस्त्रिर्धत्तन धत्तन त्रिः

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மியூசிக். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவஸ்தோத்திரம். தி டைட்டில் இஸ் சிவ சஹஸ்ர நாமாவளி ஃப்ரம் சிவ ரகசியா, பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் சர்மா, சென்னை. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: நம சிவாய. ஸ்ரீ சிவரஹசியே பர்காக்கியே பஞ்சமாம்சே சத்வாரிம்சோத்யாயே சிவசஹஸ்ரநாமாவலிஹி. தியானம். கைலாசே சுஹிரண்ய விஷ்டரவரே தேவ்யா சமாலிங்கிதம் நந்தியாதைர்கணபைஹி சதா பரிவ்ருதம் வந்தே சிவம் சுந்தரம். ஓம்கார நிலையாத்மஸ்தாய நமஃ. ஓம்காரார்த்தைகவாசகாய நமஃ. ஓம்காரேஷாக்ருதயே நமஃ. ஓமிதி சப்தக்ருதஸ்துதயே நமஃ. ஓம்காரகுண்டநிலயலிங்கபூஜனபாபஹ்ருதே நமஃ. நமிதாசேஷதேவாதயே நமஃ. நதீபுலினசம்ஸ்திதாய நமஃ. நந்திவாத்யப்ரியாய நமஃ. நித்யாய நமஃ. நாமபாராயணப்ரியாய நமஃ. மகேந்திரநிலையாய நமஃ. மானினே நமஃ. மானசாந்தரபாபபிதே நமஃ. மயஸ்கராய நமஃ. மகாயோகினே நமஃ. மாயாசக்ரப்ரவர்த்தகாய நமஃ. சிவாய நமஃ. சிவதராய நமஃ. சீதாய நமஃ. சீதாம்சுக்ருதபூஷணாய நமஃ. தனுஷே நமஃ. சரகராய நமஃ. த்யாத்ரே நமஃ. தர்மாதர்மபராயணாய நமஃ. ஆத்மனே நமஃ. ஆதாரியாய நமஃ. ஆலாத்யாய நமஃ. அனங்கசரகண்டனாய நமஃ. ஈஷானாய நமஃ. ஈட்யாய நமஃ. ஈத்ர்யாய நமஃ. இபமஸ்தகசம்ஸ்துதாய நமஃ. உமாசம்ஸ்லிஷ்டவாமாங்காய நமஃ. உஷீரநரநிருபார்ச்சிதாய நமஃ. உதும்பரஃபலப்ரீதாய நமஃ. உமாதிசுரபூஜிதாய நமஃ. ரிஜீஷீகிருதபூசக்ராய நமஃ. ரிபுப்ரமோதனோர்ஜிதாய நமஃ. லிங்கார்ச்சகஜனப்ரீதாய நமஃ. லிங்கினே நமஃ. லிங்கசமப்ரியாய நமஃ. லிபிப்ரியாய நமஃ. பந்துஹீனாய நமஃ. லீலாகிருதஜகத்ரயாய நமஃ. ஐந்திரீதிக்பதிசம்யுக்தாய நமஃ. ஐஸ்வர்யாதிபலப்ரதாய நமஃ. ஔத்தானபாதபூஜ்யாங்க்ரயே நமஃ. ஔமிதிசுரபூஜிதாய நமஃ. கல்யாணாச்சலகோதண்டாய நமஃ. காமிதார்த்தபலப்ரதாய நமஃ. கஸ்தூரிதிலகப்ரீதாய நமஃ. கற்பூரபகலேவராய நமஃ. கரந்தமசுதப்ரீதாய நமஃ. கல்பாதிபரிவர்ஜிதாய நமஃ. கல்பிதானேகபூதாதயே நமஃ. கலிகல்மஷநாசனாய நமஃ. கமலாபலசந்நேத்ராய நமஃ. கமலாபதிபூஜிதாய நமஃ. ககோல்கதித்யவரதாய நமஃ. கண்டிதாராதிமண்டலாய நமஃ. கந்தர்வகணசுப்ரீதாய நமஃ. கந்ததிருஷே நமஃ. கர்வநாசகாய நமஃ. கங்காதராய நமஃ. கோகணேஷாய நமஃ. கணேஸ்வரபுத்திரகாய நமஃ. கதிதாய நமஃ. கதக்னே நமஃ. கந்தினே நமஃ. கந்தமால்யவரார்ச்சிதாய நமஃ. ககணஸ்தாய நமஃ. கணபதயே நமஃ. ககணாபோகபூஷணாய நமஃ. கண்டாகர்ணப்ரியாய நமஃ. கண்டினே நமஃ. கடஜஸ்துதிசுப்ரியாய நமஃ. கோடகப்ரியபுத்ராய நமஃ. கர்மகாலாய நமஃ. கணாகிருதயே நமஃ. கணவாஹனாய நமஃ. கிருதாத்யக்ஷாய நமஃ. கணகோஷாய நமஃ. கடேஸ்வராய நமஃ. கடாநாதகரப்ரீதாய நமஃ. கடீபூதமஹாகிரயே நமஃ. சந்திரசூடாய நமஃ. சந்திரகராய நமஃ. சந்திரநார்த்ராய நமஃ. சதுஷ்பதாய நமஃ. சமசோத்பேதமத்யஸ்தாய நமஃ. சண்டகோபாய நமஃ. சதுர்முகாய நமஃ. சக்ஷுஸ்ரோத்ரமஹாராய நமஃ. சண்டிகேஸ்வரப்ரதாய நமஃ. சேதோஜன்மஹராய நமஃ. சண்டாய நமஃ. சாதுர்ஹோத்ரப்ரியாய நமஃ. சராய நமஃ. சதுர்முகமுகஸ்துத்யாய நமஃ. சதுர்வேதாய நமஃ. சராசராய நமஃ. சண்டபானுகராந்தஸ்தாய நமஃ. சதுர்மூர்த்திவபுஸ்திதாய நமஃ. சாதிதானேகலோகாதயே நமஃ. சந்தசாம் கணமத்யகாய நமஃ. சத்ரசாமரசோபாட்யாய நமஃ. छन्दोगतिदायकाय नमः जङ्गमाजङ्गमाकाराय नमः जगन्नाथाय नमः जगद्गताय नमः जह्नुकन्याजटाय नमः जप्याय नमः जेत्रे नमः जत्रवे नमः जनार्तिघ्ने नमः जम्भारातये नमः जनप्रीताय नमः जनकाय नमः जनिकोविदाय नमः जनार्दनार्दनाय नमः जामिजात्यादिपरिवर्जिताय नमः झनघ्नाङ्घ्रिजारावाय नमः झङ्कारोज्झितदुष्क्रियाय नमः टङ्कप्रियाय नमः टङ्कृतिकाय नमः टङ्क्भेदिने नमः टकारकाय नमः टादिवर्णप्रियाय नमः ठान्ताय नमः ढक्कानादप्रियाय नमः रसाय नमः डामरीतन्त्रमध्यस्थाय नमः डमरुध्वनिशोभिताय नमः डक्काध्वनिकृतानल्पबधिरीकृतदिङ्मुखाय नमः नकाराय नमः नणुकोत्तादये नमः नान्तकृण्णातिमोचकाय नमः तस्कराय नमः ताम्रकाय नमः तार्क्ष्याय नमः तामसादिगुणोज्झिताय नमः तरुमूलप्रियाय नमः ताताय नमः तमसां नाशकाय नमः तटाय नमः स्थानासुरहराय नमः स्थात्रे नमः स्थानवे नमः स्थानप्रियाय नमः स्थिराय नमः दात्रे नमः दानपतये नमः दान्ताय नमः दन्तशूकविभूषिताय नमः दर्शनीयाय नमः दीनदयाय नमः दण्डितारातिमण्डलाय नमः दक्षयज्ञहराय नमः देवाय नमः दानवारये नमः दमोदयाय नमः दत्तात्रेयप्रियाय नमः दण्डिने नमः दाडिमीकुसुमप्रियाय नमः धात्रे नमः धनाधिपसखाय नमः धनधान्यप्रदाय नमः धनाय नमः धामप्रियाय नमः अन्धसाम्नाथाय नमः धर्मवाहाय नमः धनुर्धराय नमः नमस्कारप्रियाय नमः नाथाय नमः नमिताशेषदुःखहृते नमः नन्दिप्रियाय नमः नर्मसखाय नमः नर्मदातीरसंस्थिताय नमः नन्दनाय नमः नमसामीशाय नमः नानारूपाय नमः नदीगताय नमः नामप्रीताय नमः नामरूपगुणकर्मविवर्जिताय नमः पत्तीनां पतये नमः पार्याय नमः परमात्मने नमः परात्पराय नमः पङ्कजासनपूज्याङ्घ्रये नमः पद्मनाभवरदाय नमः पन्नगाधिपसद्धाराय नमः पशूनां पतिपावकाय नमः पापघ्ने नमः पण्डिताय नमः पान्थाय नमः पादपोन्मथनाय नमः पराय नमः पणिने नमः पणालसन्मौलये नमः फणिकङ्कणसत्कराय नमः फणितानेकवेदोक्तये नमः फणिमाणिक्यभूषिताय नमः बन्धमोचनकृते नमः बन्धवे नमः बन्धुरालकशोभिताय नमः बलवताम्बलिने नमः मुख्याय नमः बलिपुत्रवरप्रदाय नमः बाणासुरेन्द्रपूज्याङ्घ्रये नमः बाणलिङ्गाय नमः बहुप्रदाय नमः बन्दीकृतागमाय नमः बालपालकाय नमः बहुशोभिताय नमः भवादये नमः भवग्ने नमः भव्याय नमः भवाय नमः भावपरायणाय नमः भवहृते नमः भवदाय नमः भूताय नमः भण्डासुरवरप्रदाय नमः भगाक्षिमथनाय नमः भर्गाय नमः भवानीशाय नमः भयङ्कराय नमः भङ्गकाराय नमः भावुकदाय नमः भस्माभ्यक्ततनवे नमः भटाय नमः मयस्कराय नमः महादेवाय नमः मायाविने नमः मानसान्तराय नमः मायातीताय नमः मन्मथारये नमः मधुपाय नमः मनोन्मनाय नमः मध्यस्थाय नमः मधुमांसात्मने नमः मनोवाचामगोचराय नमः मण्डिताय नमः मण्डनाकाराय नमः मतिदाय नमः मानपालकाय नमः मनस्विने नमः मनुरूपाय नमः मन्त्रमूर्तये नमः महाहनवे नमः यशस्कराय नमः यन्त्ररूपाय नमः यमिमानसपावनाय नमः यमान्तकर्णाय नमः यामिने नमः यजमानाय नमः यदवे नमः रमानाथार्चितपदाय नमः रम्याय नमः रतिविशारदाय नमः रम्भाप्रीताय नमः रसाय नमः रात्रिचराय नमः रावणपूजिताय नमः रङ्गपादाय नमः रन्तिदेवाय नमः रविमण्डलमध्यगाय नमः रतन्तरस्तुत्याय नमः रक्तपाणाय नमः रतपतये नमः रजसे नमः रतात्मकाय नमः लम्बतनवे नमः लाङ्गलिने नमः लोलगण्डकाय नमः ललामसोमलूतादये नमः ललितापूजिताय नमः लवाय नमः वामनाय नमः वायुरूपाय नमः वराहमतनाय नमः वटवे नमः वाक्यजाताय नमः वराय नमः वार्याय नमः वरुणोढ्याय नमः वराश्रयाय नमः वपुषे नमः धराय नमः वर्षवराय नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वराय नमः वसुप्रदाय नमः वसुपतये नमः।

सुगन्धैः कुसुमैर्बिल्वैः पत्रैर्द्रोण अर्कचं द्रोणार्बिल्व सुगन्धैः कुसुमैर्बिल्वपत्रैर्द्रोणार्कचम्पकैः देवीं शिवं च सम्पूज्य नित्यं कालत्रयेष्वपि एककालं द्विकालं वा त्रिपक्षं वा त्रिवारकं सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते। ॐ इति श्री चिदम्बररहस्ये द्वितीयः खण्डे पूजा प्रकरणे चतुर्विंशाध्याये श्रीताण्डवेश्वराष्टोत्तरसम्मेलनशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ अथ श्री चिदम्बरताण्डवेश्वर सम्मेलन अष्टोत्तर

ओम परिभ्रमणतांडवाय नमः। ओम उद्दंडतांडवायै नमः। ओम उद्दंडतांडवाय नमः। ओम भ्रमरायिततांडवायै नमः। ओम भ्रमरायिततांडवाय नमः। ओम शक्तितांडवायै नमः। ओम शक्तितांडवाय नमः। ओम निशानश्चल तांडवायै नमः। ओम निशानश्चल तांडवाय नमः। ओम अपसव्यतांडवायै नमः। ओम

ओम मृत्युमथन दांडवाय नमः। ओम मृत्युमथन दांडवाय नमः। ओम ऋषशृंगाग्र तांडवाय नमः। ओम ऋषशृंगाग्र तांडवाय नमः। ओम बिंदुमध्य तांडवाय नमः। ओम बिंदुमध्य तांडवाय नमः। ओम

सात्वजिया मम तनूस्त्वय्य भूउ दियज्ञसामयी यथा यथन्नौ व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापातिरमप्यस्तानुतपस्तपस्पतिः गुरुविष्णो विक्रामस्वोरुक्षया आयनस्कृधि घृतं घृतयो नेऽपि बप्रप्राच

विश्वरूपक स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च मन्त्रवित् परमो

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हरव ओम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

इस मूल श्लोक की व्याख्या से पहले सुरेश्वराचार्य जी ने कुछ विशेष बात कही है। मंगलाचरण के अंतर्गत उस परमात्मा को स्मरण किया है, स्वेच्छया सृष्टमाविश्य विश्वम यो मनसि स्थितः।

విశ్వం మనసి స్థిత, अपने ही मन में स्थित इस समस्त विश्व को जो नाम रूपात्मक है, चर और अचर है, स्थूल और सूक्ष्म है, व्यक्त और अव्यक्त है, जड़ चेतनात्मक ये जो विश्व है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का समूह विश्व। वेदांत विश्व शब्द का प्रयोग करता है तो एक भूमंडल का नाम विश्व नहीं है। आधुनिक विज्ञान विश्व शब्द का अर्थ एक भूमंडल को लेकर ही विश्व शब्द से परिभाषित करते हैं। वेदांत तो ऐसे भूमंडल कितने हैं कितने, सबको मिलाकर एक विश्व कहलाता है, जो कि समष्टि स्थूल है, जिसको विराट शब्द से कहा गया है, उसी को यहां विश्व कहा। स्वच्छ या सृष्टम, इस विश्व की रचना किसने की है, कैसे हुई है, तो आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि इसका कोई न कोई उपादान कारण अन्यत्व होना चाहिए, कोई निमित्त कारण होना चाहिए, कोई सहकारी कारण होना चाहिए। लेकिन वेदांत ये कहता है कि एक ही वस्तु निमित्त कारण उपादान कारण दोनों रूप होकर इस जगत का कारण बनता है। इसलिए वेदांत ने हमेशा परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा। परमात्मा ने ये जो सृष्टि की, विश्व की रचना की है, स्वच्छया अपनी इच्छा से की है, कोई बाध्यता नहीं थी, कोई अनिवार्यता नहीं थी, बाध्यता नहीं थी, यही तो उस परमात्मा की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र आदि में बादरायण जी ने सूत्र में रचना कर दी है कि विश्व परमात्मा की एक लीला है। और शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी में भगवान शिव से एक बात कही है, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम क्रीडा मृगास्ते जना। हे शिव, हे परमात्मा, संसार में जितने भी जीव हैं, इन सब की जीवों की रचना आपने खेलने के लिए की है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, स्वयं खेलने के लिए स्वयं ही अपने संकल्प से अपने खेल के साधन रूप जीव और जगत की रचना की। जब ये बात सुनते हैं हमसे तो कुछ बुद्धि वाले व्यक्ति लोग अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, बुद्धि से ही वो जी रहे हैं, उसको बुद्धिजीवी। हम तो परमात्मा से जी रहे हैं इसलिए हम बुद्धिजीवी नहीं है। जो ये कहता है कि अपनी बुद्धि न लगाओ तो संसार में बचना मुश्किल है, तो वे लोग बुद्धिजीवी हैं, अपने बुद्धि से ही वो जी रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हमको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, परमात्मा की कृपा से ही हम उत्पन्न हुए हैं, उसी की कृपा में हम जी रहे हैं, और अंत में इस लीला का समाप्ति भी उसी परमात्मा के संकल्प से ही होगा। तो हम परमात्मा जीवी हैं, बुद्धिजीवी नहीं है। हम भगवत जीवी हैं, परमात्मा जीवी हैं, उसके अनुग्रह से जी रहे हैं। सुबह हमने आंख खोली तो उसी की कृपा से खोली है, अपनी बुद्धि लगाकर नहीं खोली है। हम उठे हैं तो उसी की कृपा से उठे हैं, अपने बल लगाकर नहीं उठे हैं। हम अभी बोल रहे हैं तो उसी की कृपा से बोल रहे हैं, अपने जोर लगाकर अपनी बुद्धि लगाकर नहीं बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं तो उसी की कृपा से देख रहे हैं,
तो इसलिए हम भगवत जीवी हैं, बुद्धिजीवी नहीं है। और संसार में बहुत से हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वे लोग प्रश्न करते हैं कि जब ये सारा जगत परमात्मा ने अपने खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए रचना की है, ये खेलने का नियम भी कैसा नियम है कि एक को रुलाते रहो और तुम खेलते रहो, एक को तड़पाते रहो और तुम खेलते रहो, ये खेलने का नियम भी कोई नियम है? वास्तव में ये खेल के रहस्य को न जानने वाले ही इस प्रकार के प्रश्न करते हैं।

सभी यदि जीतेंगे तो खेल खेल ही नहीं बनेगा, जीतेगा तो एक, बाकी तो सब हार जाएंगे। और कोई कहे कि किसी को हराना भी कोई खेल है, तो हरा नहीं जा रहा है, हारते हैं। आयोजक कोई तुमको हराएंगे करके आह्वान किया है? ये तो परमात्मा का खेल है, रुलाया नहीं जाता है, परमात्मा रुलाता नहीं है अपने खेल में, लेकिन रोना पड़ता है। किसके चलते? खेलने के लिए जो टीम बनाया है, खेल के असावधानी से जीतने के लिए खेला गया था, और खेल के असावधानी से हारना पड़ता है। इसी तरह खेलने के लिए जो लीला बनी थी और खेल के असावधानी से रोना पड़ता है। हंसने के लिए खेल खेला गया था और खेल के असावधानी से रोना पड़ता है। असावधानी पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। तो क्रीड़ार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम क्रीड़ा मृगास्ते जना। हे परमात्मा, हम लोग जो कुछ भी हैं, हम तो आपके क्रीड़ा के मृग हैं, खेल के खिलौने हैं। तो इतना ही ख्याल रखना कि इन खिलौनों को जिताना है, किस खिलौनों को जिताना है और किस खिलौनों को हराना है, ये आप पर निर्भर करता है। और हम ये जानते हैं कि हराने पर भी, हारने वाला जो खिलौना है, हार कर भी आपको ही प्रसन्नता प्रदान करेगा, और जिताने वाले जो खिलौना है, वो जिता कर भी खिलाड़ी को ही प्रसन्न कराएगा। क्योंकि यदि प्रतिपक्ष नहीं हारेगा तो खिलाड़ी यहां प्रसन्न कैसे होगा? शतरंज में घोड़ा नहीं मरेगा, हाथी नहीं मरेंगे, राजा बंदी नहीं होगा विरोधी पक्ष का, तो खेलने का आनंद कहां होगा? असावधानी करने वाले का सेना, हाथी घोड़े सब बंदी हो जाएंगे, सावधानी करने वाला जीत जाएगा। तो आखिरी हारने वाले खिलौना भी होना चाहिए, वो टूट गया तो क्या हारेगा फिर? तो शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं, महाराज खेलना, खूब खेलना, खेलो, हम तो खिलौने हैं, आप खेलो, लेकिन इतने ख्याल रखना कि टूटे नहीं। क्योंकि खिलौने यदि टूट गए तो आपको खेल में मजा खत्म हो जाएगा। ये आपके हाथ पर है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं। तो जैसे भी खेलें, आप खेलें, हम आपके ऊपर, आपके हाथ में नाचने वाले हैं। तो ये परमात्मा की सृष्टि उसके संकल्प मात्र से, उसी को यहां कहा स्वेच्छया सृष्टम विश्वम। परमात्मा ने अपनी इच्छा से इस सारे जगत को बनाया। जगत उत्पत्ति के बारे में चार सिद्धांत हैं, आरंभवाद, संघातवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। ये हमारे भारतीय दर्शन में, ये कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है तो उस उत्पत्ति में ये चार हेतु मानी जाती है, और इन चार वस्तुओं की उत्पत्ति में कोई न कोई उपादान कारण होना चाहिए। तो उपादान कारण के ये चार अवस्था हैं, एक ही उपादान कारण। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो आरंभवाद के रूप में मानते हैं, जैसे वस्त्र निर्माण करने के लिए यानी कपड़े बनाने के लिए धागों का एक धागा दूसरे धागे से जुड़ने का आरंभ होता है। धागा कपड़े का उपादान कारण है, परंतु आरंभ उपादान कारण है। सिर्फ एक धागे से कपड़ा नहीं बनता है, अनेक धागे होंगे और एक धागा दूसरे धागे से जुड़ने का क्रम होगा, और जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे, और जितने धागे के जुड़ने से एक वस्त्र तैयार होता है, उतने धागे उस वस्त्र का उपादान कारण कहलाता है। लेकिन वह एक ही साथ कपड़ा नहीं बनता, ये धागे सभी एक ही साथ

0: नहीं जुड़ते हैं। आप लोगों में से बहुत से टेक्सटाइल के होंगे जो इस सिद्धांत को जानते हो, तो एक धागा दूसरे से जुड़ता है, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ता है, तीसरे के बाद चौथा जुड़ता है, चौथे के बाद पांचवा जुड़ता है। इसको कहते हैं आरंभवाद। उपादान कारण जब कार्य को उत्पन्न करने का आरंभ करता है, तंतु धागा जब कपड़ा उत्पन्न करने के लिए परस्पर जुड़ने का क्रम आरंभ होता है, तो जितने धागे जुड़ने पर कपड़ा बनता है उतने धागे जुड़ जाने पर वह धागा उस कपड़े का उपादान कारण बनता है और उस धागों से कपड़ा कार्य उत्पन्न होता है। यह है आरंभवाद का सिद्धांत। यह आरंभवाद नैयायिकों का और वैशेषिकों का है। पूर्वीय दर्शन में वे लोग कहते हैं कि ये सारा का सारा जगत परमाणु रूप है। पहले परमाणु उपादान कारण से जगत बना है और ईश्वर निमित्त कारण मानते हैं और परमाणु को उपादान कारण मानते हैं। ये जगत कुछ नहीं था, खाली इनके सबके परमाणु थे। परमाणु उसको कहते हैं जैसे इस हॉल के अंदर मिट्टी के कण इतने उड़ रहे हैं कि आप यदि यहां चलते हो तो आप उन मिट्टी के कणों से आपका ठोकर लगता है, आपका सिर टकराते हैं और कण आपके सिर के साथ टकराते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। एक दिन आप हाथ ऐसे रख लो तो आपके हाथ में कितने कण जम जाएंगे। कुर्सी बिना पूछे छोड़ दो, देखो कुर्सी में कितने जम जाते हैं। वे कुर्सी में जो जमे हुए धूल हैं, वे धूल कुर्सी में बैठने से पहले, कुर्सी में स्थिर होने से पहले कहां थे? ये अंतरिक्ष स्पेस में ही उड़ रहे थे। उसी को कहते परमाणु। वो पार्थिव है सब। कुर्सी में जो धूल जमता है, टेबल में जो धूल जमते हैं, शीशे में जो धूल जमते हैं, वे क्या है? सब पृथ्वी के कण हैं। वह सूक्ष्म कण है, इसीलिए अंतरिक्ष में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, स्पेस में उड़ते हैं। सृष्टि के आरंभ में ये सब विश्व इसी तरह अलग अलग परमाणुओं में बिखरा हुआ था। जब ईश्वर के इच्छा से इस सृष्टि का आरंभ हुआ, तब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ने लग गए और जिस समय दूसरा परमाणु पहले परमाणु से जुड़ता है तो दोनों परमाणु जुड़कर द्वेणु हो गया और उस द्वेणु के साथ दो अणु जुड़ गए और द्वेणु हो गया, उसके साथ एक तीसरा जुड़ गया त्रिश्रेणु हो गया, चौथा जुड़ गया चतुश्रेणु हो गए। इसी प्रकार से जुड़ते जुड़ते एक पृथ्वी को बनने के लिए जितनी पार्थिव परमाणु को जुड़ने की आवश्यकता थी, वो सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़ने लग गए तो ये पृथ्वी इस रूप में प्रकट हो गया, दिखाई पड़ा। और जब ये पृथ्वी का नाश होगा, लय होगा, तब ये पृथ्वी में जो जुड़े हुए परमाणु थे, जिस क्रम से जुड़े थे, उसी क्रम से बिखर जाएंगे और अंतरिक्ष में, अनंत अंतरिक्ष में वो परमाणु के रूप में बिखर जाएंगे। पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल पृथ्वी के परमाणु रहेंगे। इसलिए न्याय वैशेषिक परमाणु को नित्य मानते हैं। वेदांत परमात्मा के अलावा और किसी को नित्य नहीं मानता है, परमाणु भी अनित्य मानते हैं। न्याय वैशेषिक परमाणुओं को नित्य मानते हैं। पृथ्वी अनित्य है, कार्य रूप है इसीलिए, लेकिन पृथ्वी का परमाणु नित्य है क्योंकि कारण रूप है, कारण हमेशा नित्य होता है। महाप्रलय में भी परमाणु रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगा। जब पुनः सृष्टि करना हो तो ईश्वर के संकल्प से परमाणु आपस में जुड़ने लग जाएंगे, फिर पृथ्वी उत्पन्न हो जाएगा। जल तेज वायु ये परमाणु रूप है और आकाश भी परमाणु है। इसको कहते हैं आरंभवाद, सृष्टि होने का क्रम। एक अणु दूसरे अणु जुड़ने लग गए, उसके साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के एक ही साथ नहीं बनते हैं सृष्टि, तो उसको आरंभ कहते हैं। ये न्याय वैशेषिकों का आरंभवाद। तो बोले ईश्वर किस तरह उपादान कारण बनेगा? ईश्वर निमित्त कारण बन सकता है, उपादान कारण नहीं बन सकता। आरंभवाद के दृष्टि से उपादान कारण भिन्न और निमित्त कारण भिन्न भिन्न होना चाहिए, और कार्य को देखकर ईश्वर को सिद्ध करते हैं। लेकिन वेदांत तो इस चीज को नहीं मानता, आरंभवाद को नहीं मानता। स्वच्छ असृष्टम आविश्यम, परमात्मा एक नित्य पारमार्थिक सत्य वस्तु है और उसी के संकल्प से सारे विश्व ब्रह्मांड एक साथ उत्पन्न हुआ है। ये उत्पन्न होने के लिए एक दूसरे जुड़ने का आरंभ नहीं है। क्या सपने में तुम एक पहाड़ देखोगे, उस पहाड़ बनाने के लिए आरंभवाद लागू होगा है? एक पर्वत को बनने के लिए कितने परमाणु को जुड़ना पड़ेगा और उस परमाणुओं को जुड़ने के लिए कितना समय लगेगा, तो क्या आरंभवाद होगा वहां? एक मुहूर्त मात्र में सारा पर्वत खड़ा हो गया, घर खड़ा हो गया। एक बात अलग है कि आप व्यवहार में जो घर बनाते हो वो आरंभवाद के सिद्धांत से बनाते हो। एक ईंट के साथ दूसरा ईंट जोड़ोगे, दूसरे ईंट के साथ तीसरा ईंट जोड़ते जाओगे, और इसी तरह एक कंक्रीट के साथ दूसरा कंक्रीट होगा, एक सीमेंट होगा, वो सब होगा, वो सब मिलाओगे, तब धीरे धीरे कई वर्षों में घर बनेगा। लेकिन उसी घर को रात्रि स्वप्न में बनाना हो तो कितना समय लगेगा? क्या आरंभवाद का प्रयोग किया जाएगा, वहां सिद्धांत लागू होगा? जैसे स्वप्न में आरंभवाद के लागू हुए बिना ही कार्य प्रतीत होने लगता है। इसीलिए आज मूल श्लोक में आगे मूल श्लोक में कहते हैं ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन आत्मनि मायया बहिर्विबोध भूतम यथा निद्राया। दृष्टांत ही वही दिया मूल श्लोक में। स्वच्छया सृष्टमाविश्य विश्वम यो मनसि स्थितः। और उस परमात्मा को यहां स्मरण करते हैं जिसने संकल्प से सारे विश्व को बनाया और बनाकर वो अलग हो गया, तुम मरो जियो, हमको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ गए? ऐसा नहीं है। सृष्टि बना दिया, जीवों को बना दिया और जाओ, तुम मरो चाहे जियो, हमको कुछ लेना देना नहीं। हम एक जगह प्रवचन कर रहे थे तो एक पंडित जी थे, तो वहां मंदिर में शादी कराने के लिए आ गए। कहा पंडित जी शादी करा दीजिए, ये लड़का है लड़की है, शादी करानी है, आप शादी करा दीजिए। तो हमारे सामने ही वो पंडित ने कहा कि अच्छा करा देते। तो हमने कहा तुम इतनी सहज में शादी करा दे रहे हो, कोई तैयारी नहीं है, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। मंदिर में गए और वह परिक्रमा ले, मंदिर के मूर्ति के परिक्रमा किया, दोनों वर वधु लड़का और लड़की, ये माला उसके पहना दिया, उसने उसको पहना दिया। अब पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे तो मंत्र भी इतनी गलत अशुद्ध पड़ गए। हम सुन रहे हैं, अब करें क्या? और दक्षिणा लिया और आशीर्वाद दिया, भगवान का प्रसाद दे दिया, ले जाओ सुखी रहो, भेज दिया। वो लोग मान गए कि अब शादी हो गई। तो हमने पंडित जी को कहा कि अरे पंडित जी कैसी शादी कराते हो तुम, आखिर तुम वैदिक हो, सनातनी हो, शादी के एक कराने का एक नियम है, मुहूर्त होना चाहिए और जब चाहे तब शादी करा दिया, विधि है शादी की, अग्नि प्रज्वलन होना चाहिए, अग्नि नहीं है वो शादी भी क्या सनातनी शादी है? और फिर भी कहते हैं कि हम तो सनातनी है, सनातनी विधि से शादी करते हैं, और अग्नि प्रज्वलन नहीं किया, क्या सनातनी विधि है भाई है? तो आग जलाए बिना, सप्तपदी किए बिना कोई सनातनी विधि से शादी होगा, माना जाएगा उसको? तो हमने कहा ये क्या करा दिया, इससे तो अशुभ ही होगा, अमंगल होगा। बोले वो कहते हैं कि वर मरे चाहे वधू मरे, हमारा तो जेब भरे, हमको तो जेब भरने से मतलब है, वधु मरे चाहे वर मरे है? है? उन्होंने कहा दक्षिणा मिल गया। देखिए महाराज, इतनी में 500 रुपया दक्षिणा मिल गया ना, हमको तो ये महत्व है। और यदि हम कहते हैं कि आज लगन नहीं है, आज मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये 500 रुपया चला जाता। अब आगे मरे चाहे जी, हमको क्या लेने देना है? वो पंडित जी जैसा नहीं है परमात्मा, समझ गए ना? वो पंडित जी जैसा नहीं है कि हमने तुमको बना दिया, जाओ मरो चाहे जियो, हंसो चाहे रो, भीख मांगो चाहे राजा सम्राट बनो, ऐसा नहीं है। ये तो वैदिक सनातन। स्वेच्छया सृष्टम आविश्य, जिन जिनको जिस जिसको जिन जिन पदार्थों को बनाया उसने संकल्प के द्वारा, स्त्री बनाया चाहे पुरुष बनाया, गाय बनाया चाहे भैंस बनाया, गधा बनाया चाहे कुत्ते बनाया, राजा बनाया चाहे रंक बनाया, मालिक बनाया चाहे नौकर बनाया, घर बनाया चाहे पहाड़ बनाया, चाहे जल बनाया, चाहे हवा, जो कुछ भी बनाया उसने संकल्प से बनाया, बनाने के बाद उसी में आविष्ट होकर बैठ गया। अब बोलो, इस तरह परमात्मा प्रत्येक को बनाया और प्रत्येक में आत्मा के रूप में प्रविष्ट होकर बैठा, तो तुम्हें बनाया और तुम्हारे अंदर वही परमात्मा घुसकर बैठ गया, तो अब यदि तुम रोओगे तो परमात्मा हंसेगा, तो तुम्हारा यह आक्षेप कहां तक लागू होगा? यह आक्षेप तो तब लागू होगा कि परमात्मा जीव बना दिया छोड़ दिया, तो मरो चाहे बांचो, है भीख मांगो चाहे राजा बनो, रोगी हो चाहे निरोग हो, हंसो या रो, हमको कोई मतलब नहीं। हमारा काम तो बनाना, बना दिया, संकल्प कर दिया, बना दिया और छोड़ दिया और अलग बैठकर देखता, तब ये कह सकते हो कि ये भी कोई उसके खेल हो सकती है कि बेचारे जीव रोए रहे हैं, तड़प रहे हैं और वो बैठा बैठा देख रहा है और उसको खेल रहा है खेल। ये कोई खेल भी कोई खेल है? हमें याद आ गया, बचपन में छोटे छोटे घर में चूहियां निकलती है ना, घूमती है ना चूहा, तो उसको पिंजड़ों में पकड़ लेते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Viranminda Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे तमिलनाडु के और एक नायनमार या संत की कहानी। इनका नाम है वीरुण मंडल। तमिलनाडु के चेर प्रदेश में सेन्नगर नाम के एक कृषक परिवार में महान संत वीरुमिंडर का जन्म हुआ था। यह नगर आधुनिक केरल से कुछ दूरी पर है। पेरिय पुराण के रचयिता, वैसे बता दूं पेरिय पुराण शिव की महिमा का गुणगान है। इनमें शिव के संतों का वर्णन है जो कि तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत के प्रदेश से हैं। पेरिय पुराण के रचयिता चिक्किलर ने वीरुमिंडर की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है। विख्यात संत हैं वीरुमिंडर, जिनकी शिव के पद कमलों पर दृढ़ आस्था थी। माया ममता के समस्त बंधनों को वे कठोरता से तोड़ चुके थे। प्रभु के भक्तों के प्रति उनकी प्रबल स्नेह वंदना थी। संत वीरुमिंडर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। अनेक मंदिरों में प्रभु की अनंत कीर्ति का गुणगान उन्होंने किया और अंत में तिरुवारूर में आकर बस गए। तिरुवारूर तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। तिरुवारूर के त्यागराज शिव मंदिर में एक देवाचार्य मंडप है जहां शिव भक्त संत रहते थे। वीरुमिंडर उन्हीं के साथ रहने लगे। उस काल की परंपरा के अनुसार तिरुवारूर के मंदिर में प्रवेश करने वालों को सर्वप्रथम मंडप में रहने वाले इन शिव भक्तों की वंदना करनी थी। उसके तत्पश्चात ही भगवान के दर्शन के लिए वो भीतर प्रवेश कर पाते थे। विख्यात भक्त कवि सुंदरमूर्ति संत या नायनमार वीरुमिंडर के समकालीन थे और उन्होंने अज्ञातवश शिव भक्तों की वंदना किए बिना ही शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। भक्तों की अवहेलना देखकर सुंदर वीरुमिंडर से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा और उन्होंने घोषणा कर दी। भक्तों की अवहेलना करने वाले सुंदरमूर्ति को और उन्हें परश और उनके भगवान त्रिपुरदाह सर्प को धारण करने वाले प्रभु शिव को भी संतों की मंडली से निष्कर्षित किया जाता है। ऐसे अद्भुत साहस से युक्त वीरन मिंडल अधन्य है। सुंदरमूर्ति नायनार ये मानते थे कि वे शिव भक्तों के सानिध्य के योग्य नहीं हैं और इसी कारण वो प्रभु के प्रति अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी अयोग्यता का वर्णन किया। शिव ने उनके अनुग्रह का स्वीकार किया और उन्हें देवाचारी मंडप के संतों के समक्ष प्रस्तुत होकर कहने का साहस दिया, मैं तिल्लई चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूँ से प्रारंभ होने वाली 10 पदों की कविता उन्होंने सुंदरमूर्ति से वर्णन करवाया। इन पदों में सुंदरमूर्ति ने भक्तों की नामावली की और उनके गुणों का वर्णन किया है। इन्हीं 10 पदों के आधार बनाकर चकेला ने पेरिय पुराण की रचना की। वीरन मिंडल के जीवन की इस घटना से एक सत्य उभरता है। वीरन मिंडल आदि महान संत थे, किसी एक बात को जीवन का लक्ष्य बनाकर मार्ग में आने वाली बाधाओं विपदाओं की चिंता न किए हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। यदि प्रभु स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने लक्ष्य को त्याग करने को कहें तो भी ये ईश्वर का त्याग चाहे कर दें पर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। इन संतों के विषय में ये विचारना निरर्थक है कि इन्होंने किस बात को अपना लक्ष्य बनाया। युग बोध और जीवन दृष्टि में परिवर्तन हो गया है। जिस सिद्धांत को हम आज अत्यंत साधारण मानते हैं, हो सकता है कि कोई संत उसी को श्रेष्ठ मानकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और उसके लिए जिए या मरे। अतः लक्ष्य कौन सा है यह देखना विशेष महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, लक्ष्य सत होना चाहिए। सत यानी कि अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। संत की पहचान इसी में है कि क्या उसने अपने लक्ष्य का अंत काल तक पालन किया है या नहीं। फिर पुराण के संतों के पुण्य चरित्रों का यह संकलन लक्ष्य के लिए जीने और प्राण उत्सर्ग करने के आधार पर किया गया है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: 900 वर्ष तक तो मुसलमानों ने राज्य किया और हमारे सारे वैदिक संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया। मंदिरों को तोड़कर फेंका, साहित्य संपदाओं को आग लगाकर जला दी। एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 900 वर्ष इतिहास है मुगल साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। और लगभग 200 वर्ष क्रिश्चियनों ने राज्य कर दी। तब बड़ा मुश्किल से भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। कुछ कोई लंगोटी के भार पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भार पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए। त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा। डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है। तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है बाबा। रूपक है उस राजा, एक राजा सुस्थिर राज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता। इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राज्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्य लक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्य लक्ष्मी आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्य लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा पड़ेगा। ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। ये अर्जुन तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको जितनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे इंद्रियों में मन में और बुद्धि में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे घात लगाकर तुम्हारे साम्राज्य को छीनना चाहते हैं। और ये शत्रु यदि प्रबल होंगे, इन पर तुम विजयश्री प्राप्त नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य रूपी जीवन को, जीवन रूपी साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। तस्मात् त्वम् इन्द्रियान्यादो नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, शत्रु को जीतना हो तो शत्रु के बेस कैंप का पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे हवा में गोली चलाकर शत्रु परास्त नहीं होंगे, समझे? नहीं, हवा में गोली चलाकर शत्रु परास्त होंगे। शत्रु जहां रहकर योजना बना रहे हैं उस ठिकाने का तहस नहस करना चाहिए। उस ठिकाने को अपने कब्जे में लो, तब शत्रु कमजोर होंगे। महाराज कौन से ठिकाना है, कहां रहते हैं ये शत्रु? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम है। तीन ठिकाने हैं इनके, बाहर इंद्रियों ठिकाना, इंद्रियों में रहकर तुम्हें घात करते हैं, उससे अंदर मन में रहकर तुम्हारा घात करते हैं ये, उसके अंदर बुद्धि में रहकर तुम्हारा घात करते हैं। कैसे घात करते हैं महाराज? इनके घात करने के सिस्टम गीता में बहुत सुंदर ढंग से प्रक्रियागत बता दिया है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। ये देखो उनके घात करने के सिस्टम क्या है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर गंधा निवासयात बाहुर नाव मीमां वसा। ये उनके घात करने की प्रक्रिया है। ये शत्रु पहले तो इंद्रियों को विषय में भेज देंगे, और जब विषय के प्रति इंद्रियां पूरी तरह आसक्त हो जाएंगे तो इंद्रिय के पीछे पीछे मन भी जाएगा और मन के पीछे पीछे बुद्धि भी जाएगी। जब इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों विषय में लग जाएंगे तो ये काम और क्रोध रूपी शत्रु आत्मा रूपी राजा को उसी के साथ खींचकर विषय में ले जाकर फंसा देंगे। और आत्मा रूपी राजा मैं विषय में फंस गया कि ये बोध उसको नहीं हो पाता है। आह क्या मजा आ गया है, बारिश हो रही हो, कॉफी और गरम गरम पकौड़ा खाते समय में यही कहेगा कि क्या मजा आ गया है, और दो पकौड़े की जगह चार पकौड़े खा गया, चार की जगह आठ खा गया, मजा आ गया। और शत्रु कहता है इसी के लिए तो ये सब तैयारी किया है मूर्ख, इसी के लिए तो ये तैयारी किया है। अब जब गरम कॉफी और चार के जगह आठ पकोड़े खा गया, तेल भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नमक भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कॉफी भी है उसमें जो कैफीन होता है कॉफी में वो भी हाई प्रेशर के लिए है, ये सब वातावरण तैयार किया किसने, काम ने। इसको पछाड़ना है, दूसरे उपाय से तो पछाड़ नहीं पाएंगे, इस तरह पछाड़ देंगे। तब खाने के बाद टर्न खाया तो दूसरे दिन सिर नहीं उठा पा रहा है, क्या हुआ महाराज है, क्या करे, चक्कर आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पहुंच गया डॉक्टर के यहां, महाराज, डॉक्टर ने जब आला लगाकर देखी प्रेशर हाई हो चुका है, अरे तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, कम करो, क्या खाया था कल, पूछेगा डॉक्टर, क्या बताओगे, नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल थोड़ा बारिश ज्यादा भीज गया था, घर में जो है पकोड़े थे तो कॉफी और पकोड़े खाने की इच्छा हुई, थोड़ा दो चार पकोड़े ज्यादा ही खा लिया था, फंस गए भाई है? अब न जप कर पाओगे, न तप कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे, पछाड़ दिया ना है, परास्त कर दिया ना। ये देख लो, पहले तो शत्रु क्या है ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु रहते कहां हैं ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु किस तरह काम करके हमको परास्त करते हैं उस सिस्टम को भी जानना जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को तुम जानोगे तब तो इन शत्रुओं को जीतने में तुम सक्षम होगे, अन्यथा जीवन तो कितनी जीवन हमारा इसी तरह परास्त होकर बर्बाद हुआ है, यदि बर्बाद न होता तो आज तक जीव बनकर न भटकते, जीवन सार्थक होता तो अभी तक जीव बनकर भटकना पड़ता है। बड़ा सुंदर एक श्लोक रूपक के रूप में है, आरूढ़ भक्ति गुण, गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी, डोरी, समझे नहीं, गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में रस्सी डोरी, हाँ। अब चाप शब्द का अर्थ होता है धनु, समझे नहीं, धनुष, धनुष बाण, और उस धनुष में डोरी रस्सी चढ़ाई जाती है। कैसे डोरी, बोले आरूढ़ डोरी, आरूढ़ गुण कुंचित, जब डोरी कसी जाती है तब धनुष बैंड होकर झुकता है, और डोरी खोल दो तो वह सीधा ही रहता है, लकड़ी की तरह, डंडे की तरह। जब एक छड़े में डोरी बांधो जोर से और दूसरे कोने में, दोनों कोने को डोरी से कसोगे तो वह बैंड होकर तो डंडा धनु झुकेगा। राजा लोग या फिर योद्धा लोग जब लड़ने के लिए तैयार होकर चलते हैं तो सबसे पहले प्रत्यंचा डोरी चढ़ाते हैं, और जब विश्राम होता है तो डोरी खोल के रखते हैं। जब युद्ध विराम होता है ना तो सेना लोग डोरी खोल देते हैं, निकाल देते हैं, और जब युद्ध में जाने की तैयारी करनी होती है तो फिर डोरी चढ़ाते हैं, बांधते हैं, कसते हैं। तो तैयारी पूर्वक अवस्था को यहां आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचापम, भावना रूपी धनुष बाण, भावना माने ध्यान, ध्यान रूपी धनुष में भक्ति रूपी डोरी चढ़ा दिया गया है। ये शत्रु जीतने की तैयारी है, ध्यान देना, क्योंकि शत्रु जीतना है हमें। शत्रु क्यों जीतना है? सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्त करना है। शत्रुओं ने जब तक शत्रुओं को नहीं जीतेंगे तब तक हमारी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं होगी। ये दिखावा जो भक्ति से तुम्हारी मुक्ति नित्य नहीं होगी है, यहां तो नित्य मुक्ति मुक्त चाहिए, नित्य मुक्तता, अन्यथा तुम मुक्त भी होगे तो फिर जय विजय की तरह पतित होना पड़ेगा। नित्य नहीं होगा ना वो मुक्ति, वहां पर भी कुछ न कुछ गलती करोगे, सुस्थिर न होकर अस्थिर हो गए। क्या था मुक्ति अस्थिर होने में हेतु? क्या था? द्वैत दृष्टि। प्रसंग आप लोगों ने सुना है कई बार, भेद बुद्धि। भगवान के अनन्य सेवक जय विजय द्वारपाल हो गए, सामीप्य मुक्ति प्राप्त किया, सालोक्य नहीं, सामीप्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालोक्य का मतलब होता है भारत के किसी कोने में तुम पैदा हो जाओ तो ये सालोक्य हो गया, है ना? सामीप्य हो गया। अरे भाई, राष्ट्रपति के आसपास में कहीं घर बना के रह गए, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में है, और इसलिए सामीप्य हो गया, उनकी सामीप्यता। इसी तरह वैकुंठ, इतना विशाल लोक है, उस किसी लोक के वैकुंठ के किसी कोने में पैदा होना तो सालोक्य हो गया, लेकिन भगवान नारायण के नजदीक ही तुमको कुटिया बनाने को मिल जाए, हैं? क्या गौरव है, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, देख लो। सायुज्य का मतलब होता है उसके काम में आना, उसके सेवक बनना, उससे अभिन्न होकर रहना, समझे कि नहीं? सायुज्य, सामीप्य और सायुज्य में बड़ा अंतर है। सामीप्य वाला अंतरंग में नहीं जा सकता है, बहिरंग में रह सकता है, बाह्य कक्ष में रहेगा लेकिन अंतरंग नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? बोलो। तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हारे बेडरूम में जा सकता है? बोलो, जा सकता है बेडरूम में मोटरसाइकिल, लेकिन तुम्हारा चश्मा बेडरूम में जा सकता है कि नहीं? तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारा चश्मा जा सकता है कि नहीं, बोलो? अंतरंग हो गया ना, मोटरसाइकिल बहिरंग हो गया। भक्तों के ऐसी कैटेगरी वैष्णवों ने स्वीकार की है। कुछ मुक्ति ऐसे है कि उसके लोक में जन्म ले पहुंच गए तो वही मुक्ति है, बड़ा आनंद है वो लोक में। लोक में नहीं है, उससे और ज्यादा कृपा हो गई है उसके महल में आसपास में, और उससे और ज्यादा मिल गई तो सामीप्य और नजदीक, उससे और कृपा हुई तो सारूप्य। जब तक सारूप्य भक्ति नहीं मिलती है तब तक जो है वह सुस्थिर राजलक्ष्मी नहीं होता है, सुस्थिर नहीं होता वो मुक्ति, सुस्थिर नहीं होता। अब ये प्रसंग यहां भगवान शंकराचार्य जी शत्रु को जीतकर अपना साम्राज्य प्राप्त करना है उसके लिए साधन दो वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग किया, भावना को चाप के रूप में, भावना माने ध्यान, को धनुष बाण के रूप में, और दृढ़ भक्ति को मजबूत रस्सी के रूप में। वो रस्सी से युद्ध नहीं जीता जा सकता जिस रस्सी से धनुष बाण को तैयार किया और तीर चढ़ाकर जब खींचते ही टूट जाए, वो तो कमजोर रस्सी है, और तीर छोड़ने से पहले खींचना पड़ेगा, खींचते ही रस्सी टूट जाए तो लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा ना। तो डोरी कैसी चाहिए कि बोले सुदृढ़ आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित, कुंचित माने खींचना, गुण माने रस्सी, भक्ति को रस्सी बनाओ, भावचाप युक्त ही। तो हो गया धनुष तैयार, डोरी और धनुष को, बाण को, धनुष को चढ़ा दी तो धनुष तो तैयार हो गया। तो बाण क्या है भाई? अब तीर चाहिए कि नहीं? धनुष तो हो गया, लक्ष्य भेदन तो धनुष नहीं करेगा ना, लक्ष्य भेदन तो तीर बाण, धनुष बाण बोलते हैं ना, तो बाण चाहिए कि नहीं? तीर चाहिए। क्या है तीर? शिवस्मरण, नित्य निरंतर शिव का स्मरण ही शिव भक्ति रस्सी है, शिव ध्यान धनु है, और शिव स्मरण क्या है? बाण है। शिवस्मरण बाण गणई ही, धनुष एक हो तो भी चलेगा, तीर एक से काम नहीं चलता, तीर ज्यादा चाहिए, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया है। शिवस्मरण बार बार करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार शिव स्मरण करो, कभी भूलना नहीं, कभी विस्मरण न हो, इसी को आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। सोते समय भी स्मरण करो, जगते समय भी स्मरण करो, चलते समय भी स्मरण करो, बैठते समय भी स्मरण करो, तो यही हो गए बाण, शिव स्मरण बाण। कैसे? बोले अमोघई, शिव स्मरण ऐसा करो कि वह व्यर्थ न जाए। शिव स्मरण को मनोरंजन नहीं मान लेना, वो अमोघ ही शब्द से है। शिव स्मरण मनोरंजन नहीं मानना, अमोघ ही। वो तो जीवन के कष्ट से कष्टतम अवस्था में भी उसको नहीं छोड़ना है, तभी जो शिव स्मरण अमोघ बाण होगा। अमोघ बाण का अर्थ होता है लक्ष्य भेदन करे, करने के बाद वह लक्ष्य को भेदन किए बिना व्यर्थ न जाए। धनुष में चढ़ाकर जब उसका भेदन करते हैं तो लक्ष्य भेदन न किए बिना वह बेकार नहीं जाता, उसको अमोघ बोलते हैं। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिव स्मरण बाण गणेर मोघई। महाराज तुम्हारी तैयारी तो ऐसे है कि बड़े भारी शत्रुओं से लड़ना है। बोले हां, निर्जित्य किल विष रिपुन, किल विषय ही रिपु है तुम्हारे। किल विष माने पाप। पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है बोलो। देखो भक्ति सिद्धांत में तुम जो कह रहे हो वो बड़ा पाप हो सकता है, ज्ञान सिद्धांत में भगवान को भूल जाना पाप नहीं है। ध्यान देना, ज्ञान सिद्धांत में सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने को भूल जाना। भगवान को भूल जाना इतने ज्यादा घातक नहीं है, नुकसान नहीं है। अपने को, खुद को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान तो यह है। को हम, ये तुमको ही पता नहीं है, अपने ही बारे में तुमको जानकारी नहीं है। और सनस सुजातीय दर्शन में तो भगवान सनस सुजात ने धृतराष्ट्र को कहा, किम तेन न कृतम पापम। ये सनस सुजातीय दर्शन का श्लोक है, किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिण। उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया दुनिया में, जीवन में, किस चोर ने, आत्मा अपहरण, अनात्मा शरीर को आत्मा मान लिया, अनात्मा प्राण को आत्मा मान लिया, अनात्मा इंद्रियों को आत्मा मान लिया, अनात्मा मन बुद्धियों को आत्मा मान लिया। इससे बढ़कर किम तेन न कृतम पापम, सबसे बड़ा पाप तो यही है। और जो पाप है वो तो बहुत क्षुद्र पाप हैं, बच्चे कच्चे हैं पाप के। सबसे बड़ा पाप तो यहीं से शुरू होता है, अकर्ता को कर्ता बता देना, अभोक्ता को भोक्ता बता देना, ज्ञान स्वरूप को अज्ञानी मान लेना, अजन्मा को सजन्मा मानना, ये कम पाप है? ये कोई छोटे मोटे पाप है? ये उसी के तरफ यह संकेत कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य। किल विष रिपुन, पाप ही शत्रु है। हमारा शत्रु हमारे ही पाप। अब पाप को पैदा किया किसने बोलो? पाप के बाप कौन है? तुम खुद हो। अध्यात्म में दूसरे के पाप दूसरों को कष्ट नहीं देता। मेरा पाप तुमको कष्ट देने जाएगा? बोलो। मैंने जो पाप किए मेरा पाप तुमको कष्ट देने के लिए नहीं जाएगा। तुमको कष्ट कौन देता है? तो तुम्हारा ही पाप, तुमने जो की है वो पाप है। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया वर्षों से, अब तुम यदि कोई यदि कहे कि मैं एक टाणो खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, नित्य गंगा स्नान करूंगा, चलो नित्य न करो तो 21 तारीख को तो कर लो नर्मदा स्नान, 21 तारीख को नर्मदा स्नान में जा रहे हैं ना कुछ लोग, सुना है तो कोई नियम बना लेता है कि रोज सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 घंटा मुझे रोज जप करना है, समझे? 4 बजे उठकर जप शुरू करेगा तो कब तक? 7 बजे तक। 7 बजे तक जप करो, फिर 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम में आ जाओ, ठीक है कि नहीं? बोलो, करना क्या है और तुमने? बोलो, सुबह सुबह करना क्या है? 4 बजे उठो, पट्टा ना धोकर आसन लगा के बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जब शुरू कर दो। जब तुम ऐसा संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, शाम को 4 बजे उठने का संकल्प करके अलार्म लगाकर सोते हो, तो ये पता चल जाता है किसको, ये तुम्हारे संकल्प का पता किसको चलता है? तुम्हारे पापों को, पापों को पता लग जाता है ये षड्यंत्र कर रहा है। 4 बजे उठूंगा कहता है, स्नान करूंगा कहता है, जप करूंगा कहता है, मर गए भाई। अब तो हम तो मर गए, बिना मौत मर गए, कौन पाप? तब वो लोग, तुम तो सो जाते हो संकल्प करके, वो मीटिंग करने लगते हैं। ये सच्ची बात है, मैंने गप नहीं किया है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है। तब वे लोग मीटिंग करने लग जाते हैं कि इसको इसके संकल्प अनुसार, इसकी योजना के अनुसार काम करने नहीं देना है, नहीं तो हमारा सत्यानाश करेगा ये, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा ये। तब क्या करना है? तो एक बोलता है, मुझे आइडिया आ गया भाई। क्या? जब वो अलार्म लगाकर सिरहाने में रखेगा घड़ी, जब घड़ी का अलार्म बजेगा तो उसके हाथ में जाकर मैं बैठूं और फट वो अलार्म को बंद करने के लिए उसके हाथ को मैं चला दूंगा, चिंता नहीं करो। तो वो हाथ में बैठता है, कहते हैं ठीक 4 बजे के आसपास में आकर हाथ में बैठ जाता है योजना बनाकर, तो प्रे अलार्म बज गया, टू टू टू टू, सोए सोए हाथ बंद करके फिर रजाई ताल ली। क्या मजा, पाप बड़े खुश हो जाते, बस जब बस तुमने काम की बेटा, अब आराम से बैठेंगे भाई। और 7 बजे के प्रेमपुरी जाने की जगह 9 बजे तक सो गया, राज किसका हुआ बोलो? पापों का राज हुआ कि नहीं? जीत गए कौन? ये दृष्टांत से तुम, ये महाभारत में स्पष्ट लिखा है, करते यही है कौन? तुम्हारे किलबिस, तुम्हारे पाप, षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि ये नियम बनाकर करने लग जाएगा तो हमारा तो नाश हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो बड़ी सावधानी, दृढ़ता चाहिए हो। छोटे मोटे हथियार से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बड़े दृढ़ हथियार की तैयारी कर रहे हैं।
7: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio's 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
8: और उनकी स्तुति करने से हमें क्या लाभ हुआ? हम वो परमात्मा जिसे मन वाणी भी नहीं जान सकते, उसे ये मन वाणी से जानने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। तो ऐसी अतद व्यावृत्ति से श्रुति बता के भी चकित हो जाती है। अभी इतना सुनने के बाद हम चकित नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वो वाणी से भी निर्देशित नहीं है, फिर भी बोलने की चेष्टा, ये हमें चकित नहीं करेगी तो क्या करेगी? और जीवन में चकित होने वाला इससे ज्यादा क्या है? अरे भाई, आप यहाँ देखने को आइए, आप हैरान हो जाएंगे, इतना सुंदर दृश्य है। आप हैरान हो जाएंगे, इतना सुंदर श्रव्य है, इतना सुंदर है। इससे ज्यादा हो सकता है? उसे बताना, जो आपको ऐसा बताए ना, उसे बताना कि भाई देखो, उसे आप जहत अजहत समझाने में शुरू हो जाएंगे ना, तभी वो आपको पैर छू के निकल जाएगा। बोले कि मैं जो इतना सुना रहा हूं, उससे ज्यादा चकित करने वाला है तेरा विषय? बोले वो उतना सुनने के लिए रहेगा, ही वोंट बी देयर। और आपके आपको समय मिल जाएगा उसका नाम लेने के लिए। हाँ, ये समझाना शुरू ही कर देना, वो चला जाएगा अपने आप, और उसका कुछ नसीब होगा तो बैठ के सुनेगा और पार लग जाएगा। तो बोले श्रुति भी अभेद भाव से महिमा की स्तुति नहीं कर सकते हैं। हे परमात्मा, स कस्य स्तोतव्यः, कतिविद गुण कस्य विषयः, पदे तू अर्वाची ने पतति न मनः कस्य वचः। हे परमात्मा, आप किससे जाने जा सकते हैं कि आप कितने गुण वाले हैं? तो भी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आपके साकार स्वरूप में, देखिए आप, बहुत मजे की बात है, यहाँ बड़ी बड़ी अतत की बात की, सबका बात कर दिया, और अब कहते हैं कि भाई करना क्या है? भाई ये परमात्मा, ये अतज व्यावृत्ति से मिले हुई जो अहम ब्रह्मास्मि की ये जो भावना है, ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति कहाँ टिक सकती है? भाई आपके जो साकार स्वरूप जो है, उसी में ये अनुभूति को मैं रख सकता हूँ। देखिए, आपके पास कोई वैल्यूएबल कोई वस्तु होगी, कोई ऐसे पेपर्स होंगे, या आपके कोई भी चीज होगी जो बहुत ही वैल्यू रखती है, आपके पास जो भी आपका ज्वेलरी होगा, वो कहाँ रखेंगे आप? इधर उधर तो नहीं रखेंगे ना, रखेंगे कहाँ? कोई सेफ में रखेंगे ना। जो चीज बहुत महत्व की है, उसे सेफ में रखी जाती है। तो ये अतद व्यावृत्ति से ये परमात्मा, अगर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ये परमात्मा को धारण हो गए भीतर, तो उसे कहाँ रखना चाहिए? उसकी जगह क्या है? सेफेस्ट जगह कहाँ है? तो बोले कि परमात्मा, ऐसे आपके गुण को न जानने वाले आपके साकार स्वरूप में किसके मन और वाणी प्रवेश नहीं करते? यानी क्या कहना चाहते हैं कि मन और वाणी एट द मोस्ट प्रवेश कर सकते हैं तो आपके साकार स्वरूप में, यानी परमात्मा के साकार स्वरूप के बिना आपकी मन और वाणी को कहीं भी प्रवेश करने नहीं दीजिए। बहुत बड़ा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि अतत जागृति से जो परमात्मा आपने प्राप्त किया है, जो अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति क्षण के लिए भी आपने सुनी, कान में गई, और जो थोड़ा भी आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्य को साकार में संजो के रखिए। वहां वो इधर से उधर नहीं हिलेगा। बाकी ये शरीर मन बुद्धि के संघात में साथ को लेके, अहम बुद्धि से मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, ऐसा विचार किया तो वो अहम वृत्ति तिरोभूत हो जाती है, वो चली जाती है। एक बूंद पानी का आपके हाथ में आ गया तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे संभालने के लिए जितना जल्दी हो सके आप समुद्र

भी परेशान आपको करेंगे। वो कैसे भी करके वो परमात्मा मन से जानने वाला है ऐसा आपको मन बताता ही रहेगा, और ऐसा न हो इसीलिए जब मैं शांत हूं तब आपके साकार स्वरूप में मन इधर उधर भटकता है तो तुरंत उसको साकार पकड़ा देता हूं कि भाई तुझे देखना ही है ना, रूप देखना ही है ना, आंख मचलती है कि रूप को देखो, यहां परमात्मा तुझे दिखा दूंगा, तुझे रूप देखना ही है तो यही रूप देख, दिस इज दी ओनली रूप यू हैव नो चॉइस, यही देखो, तुझे सुनना ही है परमात्मा का नाम ही सुनो, तुझे बोलना ही है परमात्मा के ही नाम बोलो या चुप रहो वाणी को बोल देना। तो इसीलिए यहां कह दिया है कि जानने के बाद भी मेरे मन और मेरी बुद्धि ऐसे ही सात्विक रहे जब तक, ये देखिए ये अदृढ़ अपरोक्षानुभूति होती है, पहले थोड़ी देर के लिए लग जाता है, संतों के सानिध्य के साथ लग जाता है, परमात्मा की मूर्ति के सानिध्य के साथ लग जाता है कि मैं ये परमात्मा हूं, फिर छूट जाता है, नहीं हम प्रपंच शुरू कर देते हैं, कहां घुस जाता है हम लोग, हमें आश्चर्य होता है कि इतना सब सुनने के बाद मैं कैसे ये सोचने लगी, वो मुझे पता नहीं है ये मन ये काम कर रहा है, तो ये मन कहां से आ जाता है पता नहीं लगता। इसीलिए ऐसा मत सोच लेना, गलती मत करना कि एक बार ये सुन लिया मैं ब्रह्म हो गई तो सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी होता होता तो करोड़ों साल से ये भगवद गीता ये उपनिषद पर यहां से ये मंच से और ऐसे आश्रमों तो कितने हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, वहां से सब वक्ता कितने घंटों तक बोलते रहते तो पोर्शन खत्म क्यों नहीं होता है, पीएचडी और एमबीए का भी पोर्शन एक साल में या पांच साल में खत्म होगा, ये पोर्शन हजारों साल से चल रहा है, ये बोलना खत्म क्यों नहीं होता है, इसीलिए कि इतना सरल नहीं है और इतना क्लिष्ट भी नहीं है। करना क्या है, हमारी जो अहम की वृत्ति जो है उसे हमें तोड़ते रहना है। तो मन और वाणी भी नहीं प्रवेश सकते। अब आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, श्लोक नंबर 3, जिसके पास पुस्तक है आप उसका गान कीजिए, आप गाइए, सब लोग गाइए साथ में, मधुस्फीता वाचः

बहुत सुंदर बात की है। हे प्रभु, अभी परमात्मा की वाणी को क्या कह रहे हैं पुष्पदंत जी। अब देखिए, जिसे अभी आप सोचिए कि जिसे मन और वाणी से भी नहीं कहा जाता, वो उनकी खुद की भी क्या कोई वाणी हो सकती है? तो यहां कैसे कहा, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितः तवतः। वे पूरा भाषांतर देख लेंगे, फिर सोचेंगे कि ऐसा क्यों कहा। और परमात्मा की वाणी को मधुर कहा, और वाणी से नहीं जान सकते तो परमात्मा की कुछ वाणी भी नहीं हो सकती, तो ऐसा क्यों कहा? वो वाणी है तो कौन सी है? अब जानिए कि वो वाणी कौन सी है परमात्मा की। कहते हैं, हे प्रभु, मधु जैसी मधुर और परम अमृत समान अलंकार कृत आपकी वाणी कैसी है? तो कहा, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितवतः। ऐसी वाणी को निर्मितवतः, आपकी वाणी वो नहीं है, आप वो वाणी को निर्मित कर रहे हो। अब ये क्या कहा है, परमात्मा कौन सी वाणी को निर्मित करते हैं? वाणी का विषय नहीं है, वो वाणी कैसे निर्मित कर सकते हैं? तो यहां कौन सी वाणी की बात की है? तो यहां वेद वाणी की बात की है। वेद वाणी यानी ये जो उपनिषदों में जो ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म का विशेषण, विशेष रूप से ब्रह्म का कथन किया गया है, वो वाणी को हम क्या कहते हैं? अपौरुषेय वाणी जो है, वो वेद वाणी के कर्ता हे शिव आप है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितव्य।

व्यः परमात्मा, ये वाणी जो है ना वो परमात्मा के निश्वास रूप है, उसमें उनका कर्तृत्व नहीं है, कोई करने का भाव नहीं है। निश्वास निश्वसितव्यम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितव्यम, याने देखिए निश्वास क्यों कहा है परमात्मा की वाणी को, या नाक में से निकलती है वाणी क्या परमात्मा की और उसमें से आवाज आता है तो बोले नहीं, आप श्वास ले रहे हैं, आप यहां बैठे प्रवचन शुरू हुआ और 8 और 14 हुई है, तब तक आपने कितनी बार श्वास अंदर लिया और बाहर निकाला, कितनी बार लिया या नहीं लिया, कितनी बार निकाला और लिया, आपके खुद के श्वास है आपको पता ही होना चाहिए। हाँ हाँ पता ही नहीं है, मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा यहां बैठे हुए कितने को याद आया था। हाँ यानी तो भी श्वास चल रहा था ना, तो बोले हाँ चल ही रहा है, क्या बोलते आप, चल ही रहा है पता ही नहीं लगा, यानी क्या बहुत ही सहज, अत्यंत सहज। देखिए ये बड़ी क्रिया हो रही है, श्वास का जाना श्वास का निकलना बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये। हाँ और फिर भी सहज, पूरा जीवन यहाँ तो प्राण वायु महाप्राण अंदर जा रहे हैं निकल रहे हैं तो भी क्या है, जीवन बन रहा है। हाँ शक्ति मिल रही है तो भी क्या है, इतना सब कार्य ये एक श्वास अंदर जाने से और निकलने से हो रहा है, वो सहज है सामान्य है, जाने के मुझे पता ही नहीं है ऐसा हमने कहा ना, तो बस ऐसे ही ये वेदवाणी जो है ये परमात्मा में से ऐसी निकली कोई भी प्रकार का अप्रयत्नतः है, कोई भी प्रकार का प्रयत्न इसमें नहीं है, कोई भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं, पुरुष प्रयत्न से ये वाणी नहीं निकली गई और इसीलिए ये वाणी अमृत समान है। याने अगर ये वाणी का पान, ये वाणी का श्रवण, ये वेद वाणी का मनन चिंतन और निधि ध्यासन जो भी कर लेगा वो अमृत हो जाएगा। हाँ नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तमेवं विदित्वा अमृतम अत्येति, तम एव वो परमात्मा को जानने से ही अमृत मिलता है, वो परमात्मा को जानने से ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यद गत्वा न निवर्तन्ते, याने मृत्यु से जन्म से पार हो जाते हैं। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छम् तस्य कामाय शरीरम् अनुस्वंजरेत्, ये शरीर या अगले जन्म के शरीर में वो संतप्त नहीं होता, अगला जन्म ही नहीं होता है। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, पुनः आवृत्ति नहीं होती है। क्यों इतना सारा कहा है, ये वेद वाणी अगर जो आपने सुन ली तो वो अमृत हो जाता है, इसीलिए परमात्मा को कहा कि आपकी वाणी अमृत देने वाली है, अमृत करने वाली है। यानी यहां देखिए ये बहुत गूढ़ रहस्य हमें दे दिया है कि अमर बनने के लिए इतनी जड़ी बूटी दे काफी है, वेद वाणी को ग्रहण कर लो, जहां भी वेद वाणी कही जाती है ये वेद वाणी, वेद वाणी यानी ये वेद का अंत का भाग जो उपनिषद है वो अंतिम वाणी है, क्योंकि वहां उपनिषद में क्या है तो बोले उपनिषद में मात्र ब्रह्म ही एक प्रतिपाद्य विषय है सब उपनिषदों का, ये एक बात, और वो ब्रह्म मात्र प्रतिपादित नहीं है, वो ब्रह्म मैं हूं ऐसे जीव ब्रह्म ऐक्य के महावाक्य उपनिषद में आए गए हैं, और ये वेदवाणी अभी यही आपको अमृत बना सकती है। हे परमात्मा, हे शिव जी, ये वेदवाणी ऐसी जो है आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा है कि सुनने वाला अमृत तत्व को पा लेता है। वाणी बोलनी भी नहीं पड़ती है, सुन के ही वो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसी वाणी का प्रभाव है आपका। तो ऐसी वाणी आप उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी की वाणी आपको आश्चर्यजनक कैसे लगेगी, आपकी ही वाणी अमृत देने वाली है तो ब्रह्मा जी की थोड़ी अल्प वाणी आपको क्या आश्चर्य करेगी, और फिर भी आपके गुण के वर्णन के पुण्य से हे महादेव मुझे पता है कि ये वाणी कम ही है,
इतना पता है तो आप मुझे पूछेंगे कि तो आप भी क्यों वर्णन कर रहे हैं हे पुष्प दंत जी। तो कहा कि हे महादेव, मेरी वाणी को मैं पवित्र कर रहा हूं। ये बहुत समझने की बात है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले वक्ता को भी ये समझने वाली बात है कि ये जो वाणी जो है, ये वाणी ने बहुत गलत कर्म कर लिए हैं, हाँ, गलत साक्षियां दी होगी आपने, हाँ, गलत बोला होगा, हमने असत्य भी बोला होगा। अच्छे के लिए बुरे के लिए वो भूल जाओ, कल ही हमने बोला कि अच्छे के लिए भी असत्य मत बोलिए। तो ये वाणी ने जाने अनजाने में, अज्ञान में बहुत ही असत्य कर दिया है। अब उसका रास्ता क्या है, ये वाणी को पवित्र मैं कैसे करूं? हम क्या करते हैं, कोई जगह को पवित्र करना है या हमें स्नान करने का समय नहीं है और हमें मंदिर में जाना है, रास्ते में मंदिर पड़ता है और स्नान करने का समय नहीं है और सुबह से हम घूम रहे हैं इधर उधर, तो क्या करेंगे भाई? पानी जो है अपवित्रम पवित्रम वा करके पानी को हम छोड़ देते हैं। और मंदिरों में नल की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था होती है, हाथ पैर मुंह धो लिया और मान लिया कि हम पवित्र हो गए और परमात्मा के पास चले जाते हैं। कैसी अपेक्षा से कि हे परमात्मा, नहाए हुए नहीं है, नए कपड़े नहीं पहने हैं, सुबह से बहुत सी जगह से घूम फिर के हम आए हुए हैं, फिर भी मान लीजिए, इतना पानी छिड़काव किया तो मान लीजिए कि हम पवित्र हो गए, ऐसे आप हमें स्वीकार लीजिए। ऐसे ही है परमात्मा, ये मन वाणी वचन और कर्म से बहुत सारा गलत हो गया, अब मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपका श्रवण कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, ये कोई भी विधि से ये शरीर मन बुद्धि के संगात को मैं पवित्र कर रहा हूँ, ऐसा आप मान लीजिए और मैं पवित्र, इस प्रकार मैं पवित्र हो रहा हूँ। तो ऐसे मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए ये स्तुति मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये स्तुति मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानि क्या कि ये शरीर मन बुद्धि से पूर्व में कितने भी पाप अगर हो गए हो, बुरा असत्य हो गया हो, उसे सब आप भूल जाइए। अभी उसकी वाणी सुन रहे हैं ना, ये अतीत पंथानम, इतना एक पद भी, एक शब्द भी परमात्मा का। और इसीलिए कहा है ये सब महिमाएं जो है, ये भगवद गीता शंकराचार्य जी ने कह दिया है, आह, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चाम, तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। आहा, क्या कह दिया, भगवद गीता किंचित अधीता, ओहो, थोड़ा भी भगवद गीता का पान कर लिया, अनुष्टुप छंद का चार चरण है उसमें से पहला पद भी सुन लिया कानों में तो हो इनफ, ये नहीं सुना तो गंगा जल का थोड़ा पान कर लिया तो भी इनफ है, ये भी नहीं हुआ तो मुरारी भगवान का एक बार भी नाम लिया मुरारी इनफ। अब चिंता छोड़ दीजिए, उसकी बात यम नहीं कर सकते हैं और ये बात गलत नहीं है, इतना सोच लीजिए। परमात्मा को क्या करना है, परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आओ ना तो सब कुछ झंझट चिंताएं छोड़ के आओ। हे परमात्मा, चिंताएं तो छोड़ के आओ, पर जो पूरा हो गया है उसका क्या, उसका आप कुछ प्रबंध पहले कर दीजिए। तो उसका प्रबंध मैं करता हूँ ना, मेरा नाम श्रवण कर लिया, मुझे याद किया तो तुम्हारे सब पूर्व पाप छूट गए हैं, अब क्या इतना झंझट है, इतना बता दिया आप, विश्वास इसमें, श्रद्धा और विश्वास यहाँ चाहिए। जो श्रद्धा निगमाचार्य वाक्येषु विश्वासः, निगम और आचार्य के वाक्य पे विश्वास रखिए कि ये हो ही जाता है। पर आप कैसे कह सकते हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? नहीं तो हम बोलेंगे ही नहीं। यथे दांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, दूसरे श्लोक में कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, यहाँ प्रारब्ध कर्म को भी परमात्मा ने बचा के नहीं रखा, ऑल और नन। राजा जब देता है तो उसके महिमा से देता है, राजा ऐसी चीज का दान करता है जिसे लगे कि यह राजा का दान है, और ये परमात्मा तो सम्राट है, स्वराट है, राजाओं का भी राजा है, वो देगा तो क्या देगा आपको, उसकी महिमा जरा भी इचनी भी विचलित नहीं हो ऐसा देगा। आपके स्टेटस के मुताबिक ही आप किसी को गिफ्ट देते हैं, छोटे आदमी को देनी है तो भी आप उतनी ही गिफ्ट देते हैं जो आपके स्टेटस को बराबर फिट बैठे, आप उससे एक पैसा भी कम की गिफ्ट नहीं देंगे। क्यों भाई, मैं दे रहा हूं,
तो यहाँ परमात्मा को भी होगा कि मैं दे रहा हूँ, और जब वो देने आए तो वो तो ये अमृत का ही दान कर रहा है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देखिए, अपवित्र तो मानना खुद को ठीक ही नहीं है, और अगर मान भी लिया तो रुजिनम संतरिष्यसी अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। हाँ, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, ये ज्ञान स्वरूप, ये परमात्मा की थोड़ी बात सुन ली तो ये सब पाप से आप पर हो जाएंगे। ऐसा निश्चिंत होके, ऐसी हल्की उपाधि को इतनी हल्की करके उसका नाम ले लीजिए। खूब हल्का होना चाहिए। देखिए, वो हवा भरते हैं ना आप, ये चौपाटी में आप जाइए, ये बलून में हवा भरते हैं, तो बलून में जब आप अपने मुख से हवा भरते हैं तो बलून ऊपर जाता है नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर लाइट गैसेस, हीलियम। हीलियम का वजन कैसा है, ये आपका ऑक्सीजन और प्राणवायु का जो वजन है उससे हीलियम कैसा है, बहुत कम वजन, हल्का वजन वाला है। हवा तो भरनी, क्राइटेरिया क्या है कि हवा तो भरनी ही है, पर कौन से टाइप की, कौन सी क्वालिटी की हवा, ऐसे ही फुग्गा ऊपर नहीं जाएगा। ये अपनी हवा से, प्राणवायु से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें विशेष वायु भरा तो वो बिना प्रयत्न ऊपर चढ़ने लगेगा। आप परमात्मा के नाम के वायु अपने मन में भर लीजिए। ये मन या हमारे जो ये बलून जो है उसके अंदर हवा कैसे जाएगी, कौन से नाम की जाएंगी, देखिए परमात्मा को, उसके सगुण साकार रूप को देखिए, बोलिए उसकी वाणी। नहीं बोलना है तो मन से उसे ही सोचिए, तो ये गैस भरता रहेगा परमात्मा का, और आप अपलिफ्टेड हो जाएंगे, आप अपने आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, किसी की भी मदद लेने की जरूर नहीं पड़ेगी। यानी अपवित्रता का, पाप का भाव आप अपने मन से निकाल दीजिए, इतना ही भगवान पुष्पदंत जी को हमें कहना है। अब हे परमात्मा, इतना जानने के बाद जो आनंद हो रहा है, वो आनंद, ये शरीर मन बुद्धि, ये परमात्मा को तद्रूप से जानने के बाद, जो पीछे का जो अभी शरीर रहने वाला है, प्रारब्ध रहने वाला है, वो प्रारब्ध में मैं करूँ क्या, तो उसमें पुष्पदंत जी ने जो किया वो हम करेंगे तो ही हम सुख पा सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब शिव के सगुण शक्ति, सगुण रूप की, देखिए हमें समय ही नहीं मिला है परमात्मा के सगुण रूप की शक्ति को देखने का। हम सगुण रूप देख के हमारा छोटा मोटा काम करवा के चले जाते हैं, हाँ, और वो तो उसका प्रभाव ही ऐसा है कि उसे देखने से ही काम हो जाता है। इसीलिए शक्ति भी मत डालिए उसमें, प्रार्थना करने की भी शक्ति मत डालिए। स्वामी दयानंद जी, हमारे बड़े गुरु जी, एक बार प्रवचन था तो उन्होंने एक शब्द इतना सुंदर बताया। उन्होंने बोला कि अगर आप स्टेशन पे बैठे हैं और आपको चाय पीने का मन हुआ और चाय वाला यहां से यहां घूमता रहता है, तो आप क्या कहते हैं, ए चाय, चाय बोलेंगे तो चाय वाला आएगा कि नहीं, चाय बोलने से चाय वाला पूरा आदमी आ जाता है, ग्लास आ जाता है, चाय आ जाती है और आप पीने भी लगते हैं। ओ बड़ा भूख लग गई ट्रेन में से, हाँ। तो ऐसे ही सेड के वेन्यू से हरे कृष्ण, उसके आगे आप तकलीफ में आ गए, बराबर के कुछ हो गया है, ये इतना, ये कुछ हो गया है, तो बोलने के पहले आप निर्देशन तो देंगे ना कि किसको, क्योंकि इतनी वैरायटी है, अभी कृष्ण भगवान और शंकर भगवान दोनों है तो बोलेंगे किसको बुलाता है, दोनों बैठे हैं तो नाम तो बोलना ही पड़ता है, तो बोले हरे कृष्ण, तो वेन्यू से हरे कृष्ण, चाय बोलने से चाय वाला पूरा आ जाता है, ऐसे हरे बोलने से हरण हो ही जाता है तकलीफ का, आगे बोलना ही नहीं है, आगे कुछ बचता ही नहीं है, कंप्लेन बचती ही नहीं है, इतने सजग हो जाइए परमात्मा के प्रति, हरे कृष्ण इनफ हो गया, उसके आगे आपकी कंप्लेन करने के लिए आप होने चाहिए ना कंप्लेन, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरे कृष्ण बोले तो हरण, एक पूरा शरीर मन बुद्धि का जड़ संघात भी चाय बोलने से आ जाता है, तो हरे कृष्ण बोलने से वो नहीं ले सकते, आपका हरण नहीं कर सकते क्या, इतना विश्वास नहीं है, हरण तो हर बार होता है, विश्वास नहीं है। हरे कृष्ण बोलने के बाद हम अपनी रिकॉर्ड शुरू करते हैं ना, उसमें वो किया हुआ हरण भी फिर से आ जाता है। वी आर एडिंग टू अवर डिफिकल्टीज, वो तो जाती ही नहीं है, उससे ज्यादा आती है कि हाँ तुझे ये भी करना है तो चलो कर देता हूं, हाँ? तो स्टॉप, प्रे एंड स्टॉप। तो यहाँ ये शिव का, ये सगुण परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 4। तवै

अब कहा सगुण साकार के रूप का वर्णन अब पुष्प दंत जी क्यों करने लगे, क्योंकि जो अब क्या हो गया, अहम तत्व से अहम ब्रह्मात्मी रूप से अगर जब आपने परमात्मा को जान लिया तो लाल चश्मा पहनने से सब क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ऐसे अहम ब्रह्मात्मी वृत्ति आ गई तो सब क्या दिखाई देगा, सब अब परमात्मा दिखाई देगा भाई। सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म अब होगा, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि अब होगी। अब तो मजा है जीने की, जीने की मजा तो अभी है। हाँ, ये ब्रह्म तत्व कोई उदासी हो जाने की बात नहीं है, कोई गंभीर्य का विषय नहीं है। विषय गंभीर है पर गंभीर्य का विषय, गंभीर होने का विषय नहीं है। विषय भले गंभीर हो तो बोले कि हे परमात्मा अब मुझे पता चल रहा है, अब तक मैं समझ रहा था ये घर मैंने बनाया, ये मैंने करा, ये मैंने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जगत की मूल में ही उत्पत्ति किसकी है भाई, उत्पत्ति जगत की, उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण तो स्वयं आप है। कहां बताया है, तैतरीय उपनिषद में बताया है। मैं उपनिषद की बात जान रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पर वो सुनी हुई बात अब मेरे समझ में आई कि सब आपका ही पसारा है, सब आप ही है। जहाँ देखूं वहाँ एक ही साईं, घट घट बसे अंतर्यामी, रंगवदूत जी ने लिखा है। उस काले का सभी पसारा, छोड़ दिया माई संसारा, काहे अब तू शोक करे है। तो यही परमात्मा सब जगह है। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवन्ति यत् प्रयत्न विषम अभिविशन्ति इति। ये परमात्मा में से ही सब कुछ उत्पत्ति स्थिति और लय है। हे परमात्मा ये मैंने कब जाना, जब वो मेरी जीवगत बूंद थी, वो बूंद तेरे परमात्मा के तेरे ज्ञान सागर में आ गई तो ये बूंद समुद्र बन गई, और समुद्र बन के मैंने देखा कि ये सब परमात्मा मई ही है। पहले ये वो ब्रह्म बन जाइए ये तत्व, और फिर आपको लगेगा कि ये उत्पत्ति स्थिति और लय ये परमात्मा में से ही, ये मुझ में से ही होती है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो मुझे लगता है हे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले आप ही एक है। तीन जो वेद है ये ऋग वेदांतर्गत, यजुर्वेदांतर्गत, अथर्व वेद है, उसको समाया लिया गया है। इसलिए तीन वेद बोलेंगे तो ऐसा मत सोचना कि भाई वेद चार है और तीन क्यों कहे हैं, उसकी चिंता मत करना, चारों आ गए हैं। तो सब तीन जो त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, बोले कि तीन वेद जो है वो उसमें वस्तु रूप से जो तत्व को प्रतिपादित किया है वो सत्वादि गुणों से लेकर तीनों शरीर में अलग अलग रीति से जो व्याप्त हुआ है वो आपका ही ऐश्वर्य है, और उसे मंद बुद्धि वाले कई खंडन करते हैं। क्या खंडन करते हैं कि ये परमात्मा ने, ये जगत उत्पत्ति स्थिति परमात्मा ने बनाई नहीं है, ये परमात्मा का काम नहीं है। ऐसे बोलने वाले जो मन मंद बुद्धि मीमांसक है उसका कोई भी काल में कोई भी लोग में कभी भी कल्याण नहीं है। विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत इहै के जड़ दिया, ये जड़ बुद्धि वाले जो है ऐसा आक्षेप वाला जो विधान करते हैं वो उसे मैं मंद बुद्धि वाले कहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हे परमात्मा, परमात्मा ने अपनी शक्ति माया से ये जगत की उत्पत्ति की, तो जगत की उत्पत्ति से आकाश से लेकर ये पुरुष तक हमारा ये जड़ शरीर मन बुद्धि का संघात है, वहां तक हम उत्पन्न हो गए। और यहाँ जो लिखा है कि तीन सत्वादि गुणों से अलग अलग शरीर बने, यानी क्या कि माया में जो है हमारा, हम जहां से जिसमें से बने हैं उसमें उसके गुण तो आने ही वाले हैं। तो माया के गुण क्या है, सत्व रजस और तमस माया के गुण है। तो ये सत्व रजस और तमस माया के गुण ये तीन शरीर में आ गए हैं, उसे तीन शरीर बने हैं। कौन से तीन शरीर बने हैं, बोले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ऐसे शरीर बने हैं, ऐसा जानने के बावजूद, ऐसा न जानते हुए कोई अलग तत्व से ये परमात्मा जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसे जो मीमांसक जो मानने वाले हैं, कोई अणु में से कहते हैं, कोई क्षणिकवाद में से कहते हैं, कोई परमाणु में से कहते हैं, तो ऐसे जो कहने वाले मीमांसक हैं
वो मात्र अल्प बुद्धि का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसी अल्प बुद्धि मेरी कभी न हो, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण मान रहा हूँ। ऐसी ही बुद्धि हमारी भी रहे, ऐसी ही परम पूज्य परमात्मा और गुरुजनों को प्रार्थना करते हैं। अब हम, आज 22 तारीख है, अब हम 24 तारीख को सुबह मिलेंगे, तब ये स्तोत्र जहाँ से हमने रखा है वहां से हम आगे उसका पाठ और स्तुति करेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மியூசிக். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவஸ்தோத்திரம். தி டைட்டில் இஸ் சிவ சஹஸ்ர நாமாவளி ஃப்ரம் சிவ ரகசியா, பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் சர்மா, சென்னை. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: நம சிவாய. ஸ்ரீ சிவரஹசியே பர்காக்கியே பஞ்சமாம்சே சத்வாரிம்சோத்யாயே சிவசஹஸ்ரநாமாவலிஹி. தியானம். கைலாசே சுஹிரண்ய விஷ்டரவரே தேவ்யா சமாலிங்கிதம் நந்தியாதைர்கணபைஹி சதா பரிவ்ருதம் வந்தே சிவம் சுந்தரம். ஓம்கார நிலையாத்மஸ்தாய நமஹ. ஓம்காரார்த்தைகவாசகாய நமஹ. ஓம்காரேஷாக்ருதயே நமஹ. ஓமிதி சப்தக்ருதஸ்துதயே நமஹ. ஓம்காரகுண்டநிலயலிங்கபூஜனபாபஹ்ருதே நமஹ. நமிதாசேஷதேவாதயே நமஹ. நதீபுலினசம்ஸ்திதாய நமஹ. நந்திவாத்யப்ரியாய நமஹ. நித்யாய நமஹ. நாமபாராயணப்ரியாய நமஹ. மகேந்திரநிலையாய நமஹ. மானினே நமஹ. மானசாந்தரபாபபிதே நமஹ. மயஸ்கராய நமஹ. மகாயோகினே நமஹ. மாயாசக்ரப்ரவர்த்தகாய நமஹ. சிவாய நமஹ. சிவதராய நமஹ. சீதாய நமஹ. சீதாம்சுக்ருதபூஷணாய நமஹ. தனுஷே நமஹ. சரகராய நமஹ. த்யாத்ரே நமஹ. தர்மாதர்மபராயணாய நமஹ. ஆத்மனே நமஹ. ஆதாரியாய நமஹ. ஆலாத்யாய நமஹ. அனங்கசரகண்டனாய நமஹ. ஈஷானாய நமஹ. ஈட்யாய நமஹ. ஈத்ர்யாய நமஹ. இபமஸ்தகசம்ஸ்துதாய நமஹ. உமாசம்ஸ்லிஷ்டவாமாங்காய நமஹ. உஷீரநரநிருபார்ச்சிதாய நமஹ. உதும்பரபலப்ரீதாய நமஹ. உமாதிசுரபூஜிதாய நமஹ. ரிஜீஷீக்ருதபூசக்ராய நமஹ. ரிபுப்ரமோதனோர்ஜிதாய நமஹ. லிங்கார்ச்சகஜனப்ரீதாய நமஹ. லிங்கினே நமஹ. லிங்கசமப்ரியாய நமஹ. லிபிப்ரியாய நமஹ. பந்துஹீனாய நமஹ. லீலாக்ருதஜகத்ரயாய நமஹ. ஐந்திரீதிக்பதிசம்யுக்தாய நமஹ. ஐஸ்வர்யாதிபலப்ரதாய நமஹ. ஔத்தானபாதபூஜ்யாங்க்ரயே நமஹ. ஔமிதிசுரபூஜிதாய நமஹ. கல்யாணாச்சலகோதண்டாய நமஹ. காமிதார்த்தபலப்ரதாய நமஹ. கஸ்தூரிதிலகப்ரீதாய நமஹ. கற்பூரபகலேவராய நமஹ. கரந்தமசுதப்ரீதாய நமஹ. கல்பாதிபரிவர்ஜிதாய நமஹ. கல்பிதானேகபூதாதயே நமஹ. கலிகல்மஷநாசனாய நமஹ. கமலாபலசந்நேத்ராய நமஹ. கமலாபதிபூஜிதாய நமஹ. ககோல்கதித்யவரதாய நமஹ. கண்டிதாராதிமண்டலாய நமஹ. கந்தர்வகணசுப்ரீதாய நமஹ. கந்ததிருஷே நமஹ. கர்வநாசகாய நமஹ. கங்காதராய நமஹ. கோகணேஷாய நமஹ. கணேஸ்வரபுத்திரகாய நமஹ. கதிதாய நமஹ. கதக்னே நமஹ. கந்தினே நமஹ. கந்தமால்யவரார்ச்சிதாய நமஹ. ககணஸ்தாய நமஹ. கணபதயே நமஹ. ககணாபோகபூஷணாய நமஹ. கண்டாகர்ணப்ரியாய நமஹ. கண்டினே நமஹ. கடஜஸ்துதிசுப்ரியாய நமஹ. கோடகப்ரியபுத்ராய நமஹ. கர்மகாலாய நமஹ. கணாக்ருதயே நமஹ. கணவாஹனாய நமஹ. கிருதாத்யக்ஷாய நமஹ. கணகோஷாய நமஹ. கடேஸ்வராய நமஹ. கடாநாதகரப்ரீதாய நமஹ. கடீபூதமஹாகிரயே நமஹ. சந்திரசூடாய நமஹ. சந்திரகராய நமஹ. சந்திரநார்த்ராய நமஹ. சதுஷ்பதாய நமஹ. சமசோத்பேதமத்யஸ்தாய நமஹ. சண்டகோபாய நமஹ. சதுர்முகாய நமஹ. சக்ஷுஸ்ரோத்ரமஹாஹாராய நமஹ. சண்டிகேஸ்வரப்ரதாய நமஹ. சேதோஜன்மஹராய நமஹ. சண்டாய நமஹ. சாதுர்ஹோத்ரப்ரியாய நமஹ. சராய நமஹ. சதுர்முகமுகஸ்துத்யாய நமஹ. சதுர்வேதாய நமஹ. சராசராய நமஹ. சண்டபானுகராந்தஸ்தாய நமஹ. சதுர்மூர்த்திவபுஸ்திதாய நமஹ. சாதிதானேகலோகாதயே நமஹ. சந்தசாம் கணமத்யகாய நமஹ. சத்ரசாமரசோபாட்யாய நமஹ. छन्दोगतिदायकाय नमः जङ्गमा जङ्गमाकाराय नमः जगन्नाथाय नमः जगद्गताय नमः जह्नुकन्याजटाय नमः जप्याय नमः जेत्रे नमः जत्रवे नमः जनार्तिघ्ने नमः जम्भारातये नमः जनप्रीताय नमः जनकाय नमः जनिकोविदाय नमः जनार्दनार्दनाय नमः जामिजात्यादिपरिवर्जिताय नमः झनघ्नाङ्घ्रिजारावाय नमः झङ्कारोज्झितदुष्क्रियाय नमः टङ्कप्रियाय नमः टङ्कृतिकाय नमः टङ्क्भेदिने नमः टकारकाय नमः टादिवर्णप्रियाय नमः ठान्ताय नमः ढक्कानादप्रियाय नमः रसाय नमः डामरीतन्त्रमध्यस्थाय नमः डमरुध्वनिशोभिताय नमः डक्काध्वनिकृतानल्पबधिरीकृतदिङ्मुखाय नमः नकाराय नमः नणुकोत्तादये नमः नान्तकृण्णातिमोचकाय नमः तस्कराय नमः ताम्रकाय नमः तार्क्ष्याय नमः तामसादिगुणोर्जिताय नमः तरुमूलप्रियाय नमः ताताय नमः तमसां नाशकाय नमः तटाय नमः स्थानासुरहराय नमः स्थात्रे नमः स्थानवे नमः स्थानप्रियाय नमः स्थिराय नमः दात्रे नमः दानपतये नमः दान्ताय नमः दन्तशूकविभूषिताय नमः दर्शनीयाय नमः दीनदयाय नमः दण्डितारातिमण्डलाय नमः दक्षयज्ञहराय नमः देवाय नमः दानवारये नमः दमोदयाय नमः दत्तात्रेयप्रियाय नमः दण्डिने नमः दाडिमीकुसुमप्रियाय नमः धात्रे नमः धनाधिपसखाय नमः धनधान्यप्रदाय नमः धनाय नमः धामप्रियाय नमः अन्धसाम्नाथाय नमः धर्मवाहाय नमः धनुर्धराय नमः नमस्कारप्रियाय नमः नाथाय नमः नमिताशेषदुःखहृते नमः नन्दिप्रियाय नमः नर्मसखाय नमः नर्मदातीरसंस्थिताय नमः नन्दनाय नमः नमसामीशाय नमः नानारूपाय नमः नदीगताय नमः नामप्रीताय नमः नामरूपगुणकर्मविवर्जिताय नमः पत्तीनां पतये नमः पार्याय नमः परमात्मने नमः परात्पराय नमः पङ्कजासनपूज्याङ्घ्रये नमः पद्मनाभवरदाय नमः पन्नगाधिपसद्धाराय नमः पशूनां पतिपावकाय नमः पापघ्ने नमः पण्डिताय नमः पान्थाय नमः पादपोन्मथनाय नमः पराय नमः पणिने नमः पणालसन्मौलये नमः फणिकङ्कणसत्कराय नमः फणितानेकवेदोक्तये नमः फणिमाणिक्यभूषिताय नमः बन्धमोचनकृते नमः बन्धवे नमः बन्धुरालकशोभिताय नमः बलवताम्बलिने नमः मुख्याय नमः बलिपुत्रवरप्रदाय नमः बाणासुरेन्द्रपूज्याङ्घ्रये नमः बाणलिङ्गाय नमः बहुप्रदाय नमः बन्दीकृतागमाय नमः बालपालकाय नमः बहुशोभिताय नमः भवादये नमः भवघ्ने नमः भव्याय नमः भवाय नमः भावपरायणाय नमः भवहृते नमः भवदाय नमः भूताय नमः भण्डासुरवरप्रदाय नमः भगाक्षिमथनाय नमः भर्गाय नमः भवानीशाय नमः भयङ्कराय नमः भङ्गकाराय नमः भावुकदाय नमः भस्माभ्यक्ततनवे नमः भटाय नमः मयस्कराय नमः महादेवाय नमः मायाविने नमः मानसान्तराय नमः मायातीताय नमः मन्मथारये नमः मधुपाय नमः मनोन्मनाय नमः मध्यस्थाय नमः मधुमांसात्मने नमः मनोवाचामगोचराय नमः मण्डिताय नमः मण्डनाकाराय नमः मतिदाय नमः मानपालकाय नमः मनस्विने नमः मनुरूपाय नमः मन्त्रमूर्तये नमः महाहनवे नमः यशस्कराय नमः यन्त्ररूपाय नमः यमिमानसपावनाय नमः யமாந்தகர்ணாய நமஹ யாமினே நமஹ யஜமானாய நமஹ யதவே நமஹ ரமாநாதார்ச்சிதபதாய நமஹ ரம்யாய நமஹ ரதிவிஷாரதாய நமஹ ரம்பாப்ரீதாய நமஹ ரஸாய நமஹ ராத்ரிசராய நமஹ ராவணபூஜிதாய நமஹ ரங்கபாதாய நமஹ ரந்திதேவாய நமஹ ரவிமண்டலமத்யகாய நமஹ ரதந்தரஸ்துத்யாய நமஹ ரக்தபாணாய நமஹ ரதபதயே நமஹ ரஜசே நமஹ ரதாத்மகாய நமஹ லம்பதனவே நமஹ லாங்கலினே நமஹ லோலகண்டகாய நமஹ லலாம சோமலூதாதயே நமஹ லலிதா பூஜிதாய நமஹ லவாய நமஹ வாமனாய நமஹ வாயுரூபாய நமஹ வராஹமதனாய நமஹ வடவே நமஹ வாக்கியஜாதாய நமஹ வராய நமஹ வார்யாய நமஹ வருணோட்யாய நமஹ வராஶ்ரயாய நமஹ வபுஷே நமஹ தராய நமஹ வர்ஷவராய நமஹ வரீயசே நமஹ வரதாய நமஹ வராய நமஹ வசுப்ரதாய நமஹ வசுபதயே நமஹ.

नमः ओम रत्न संसत्तांडवाय नमः ओम रत्न संसत्तांडवाय नमः ओम चित्र संसत्तांडवाय नमः

ृतकालाग्निताण्डवाय नमः ॐ कृत्यपञ्चकताण्डवाय नमः ॐ कृत्यपञ्चकताण्डवाय नमः ॐ पतञ्जलिसुसन्दृष्टताण्डवाय नमः ॐ पतञ्जलिसुसन्दृष्टताण्डवाय नमः ॐ कङ्कालताण्डवाय नमः ॐ कङ्काल

ऋतमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्यै याते अग्ने यस्य यातनोर्वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा।

वेदशस्य व्यस्कभ्ना रोदासी विष्ण एते दाधर्था पृथिवीमभितो मयूखैस्वाहा देवश्रुतौ देवेश्वाघोषतम् प्राची प्रेतामध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञन्नायतं माजिह्वरतम् स्वंगो

सात्वजिया मम तनूस्त्वय्य भूः दियज्ञसामयी यथा यथन्नौ व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापातिरमभ्यस्तानुतपस्तपस्पतिः। गुरुविष्णो विक्रामस्वोरुक्षया आयनस्कृधि घृतं घृतयोनेऽपि बप्रप्राच।

त्वगात्मा पशुपतिर्वातरम् हामनोजवः चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलिष्पिनाकदृत उमा।

0: शिवाय नमः, सांब शिवाय नमः, हरव ओम तत्सत्।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om. Adi Guru, सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर विचार चल रहा है। इस स्तोत्र में सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक भी है, उसको भी आधार बनाकर विचार कर रहे हैं। मूल श्लोक जो प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के तरफ से कॉपी के रूप में प्रिंट आउट किया गया है, सबको मिला होगा, आप लोग उच्चारण करें।

इस मूल श्लोक की व्याख्या से पहले सुरेश्वराचार्य जी ने कुछ विशेष बात कही है। मंगलाचरण के अंतर्गत उस परमात्मा को स्मरण किया है, स्वेच्छया सृष्टमाविश्य विश्वम यो मनसि स्थितः।

విశ్వం మనసి స్థిత, अपने ही मन में स्थित इस समस्त विश्व को जो नाम रूपात्मक है, चर और अचर है, स्थूल और सूक्ष्म है, व्यक्त और अव्यक्त है, जड़ चेतनात्मक ये जो विश्व है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का समूह विश्व। वेदांत विश्व शब्द का प्रयोग करता है तो एक भूमंडल का नाम विश्व नहीं है। आधुनिक विज्ञान विश्व शब्द का अर्थ एक भूमंडल को लेकर ही विश्व शब्द से परिभाषित करते हैं। वेदांत तो ऐसे भूमंडल कितने हैं कितने, सबको मिलाकर एक विश्व कहलाता है, जो कि समष्टि स्थूल है, जिसको विराट शब्द से कहा गया है, उसी को यहां विश्व कहा। स्वच्छया सृष्टम, इस विश्व की रचना किसने की है, कैसे हुई है, तो आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि इसका कोई न कोई उपादान कारण अन्यत्व होना चाहिए, कोई निमित्त कारण होना चाहिए, कोई सहकारी कारण होना चाहिए। लेकिन वेदांत ये कहता है कि एक ही वस्तु निमित्त कारण उपादान कारण दोनों रूप होकर इस जगत का कारण बनता है। इसलिए वेदांत ने हमेशा परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा। परमात्मा ने ये जो सृष्टि की, विश्व की रचना की है, स्वच्छया अपनी इच्छा से की है, कोई बाध्यता नहीं थी, कोई अनिवार्यता नहीं थी, बाध्यता नहीं थी। यही तो उस परमात्मा की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र आदि में बादरायण जी ने सूत्र में रचना कर दी है कि विश्व परमात्मा की एक लीला है। और शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी में भगवान शिव से एक बात कही है, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम क्रीडा मृगास्ते जनाः। हे शिव, हे परमात्मा, संसार में जितने भी जीव हैं, इन सब की जीवों की रचना आपने खेलने के लिए की है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, स्वयं खेलने के लिए स्वयं ही अपने संकल्प से अपने खेल के साधन रूप जीव और जगत की रचना की। जब ये बात सुनते हैं हमसे तो कुछ बुद्धि वाले व्यक्ति लोग अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, बुद्धि से ही वो जी रहे हैं, उसको बुद्धिजीवी। हम तो परमात्मा से जी रहे हैं इसलिए हम बुद्धिजीवी नहीं हैं। जो ये कहता है कि अपनी बुद्धि न लगाओ तो संसार में बचना मुश्किल है, तो वे लोग बुद्धिजीवी हैं, अपने बुद्धि से ही वो जी रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हमको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, परमात्मा की कृपा से ही हम उत्पन्न हुए हैं, उसी की कृपा में हम जी रहे हैं, और अंत में इस लीला का समाप्ति भी उसी परमात्मा के संकल्प से ही होगा। तो हम परमात्मा जीवी हैं, बुद्धिजीवी नहीं है। हम भगवत जीवी हैं, परमात्मा जीवी हैं, उसके अनुग्रह से जी रहे हैं। सुबह हमने आंख खोली तो उसी की कृपा से खोली है, अपनी बुद्धि लगाकर नहीं खोली है। हम उठे हैं तो उसी की कृपा से उठे हैं, अपने बल लगाकर नहीं उठे हैं। हम अभी बोल रहे हैं तो उसी की कृपा से बोल रहे हैं, अपने जोर लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर नहीं बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं तो उसी की कृपा से देख रहे हैं,
तो इसलिए हम भगवत जीवी हैं, बुद्धिजीवी नहीं है। और संसार में बहुत से हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वे लोग प्रश्न करते हैं कि जब ये सारा जगत परमात्मा ने अपने खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए रचना की है, ये खेलने का नियम भी कैसा नियम है कि एक को रुलाते रहो और तुम खेलते रहो, एक को तड़पाते रहो और तुम खेलते रहो, ये खेलने का नियम भी कोई नियम है? वास्तव में ये खेल के रहस्य को न जानने वाले ही इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। आयोजक, क्रीड़ा का आयोजन करने वाले आयोजक अनेक टीम को आह्वान करते हैं, खेलने के लिए निमंत्रित करते हैं, और सभी जानते हैं कि उसमें से सभी को हारना है, केवल एक टीम को जीतना है। और सभी को हराना ही है तो फिर क्यों खेल खेलना है, ये प्रश्न बनता है कि नहीं? 15 टीम आ गए, 20 टीम आ गए, क्या सभी जीतने वाले हैं? सभी यदि जीतेंगे तो खेल खेल ही नहीं बनेगा, जीतेगा तो एक, बाकी तो सब हार जाएंगे। और कोई कहे कि किसी को हराना भी कोई खेल है, तो हरा नहीं जा रहा है, हारते हैं। आयोजक कोई तुमको हराएंगे करके आह्वान किया है? ये तो परमात्मा का खेल है, रुलाया नहीं जाता है, परमात्मा रुलाता नहीं है अपने खेल में, लेकिन रोना पड़ता है। किसके चलते? खेलने के लिए जो टीम बनाया है, खेल के असावधानी से जीतने के लिए खेला गया था, और खेल के असावधानी से हारना पड़ता है। इसी तरह खेलने के लिए जो लीला बनी थी, और खेल के असावधानी से रोना पड़ता है। हंसने के लिए खेल खेला गया था, और खेल के असावधानी से रोना पड़ता है। असावधानी पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। तो क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम क्रीड़ा मृगास्ते जना। हे परमात्मा, हम लोग जो कुछ भी हैं, हम तो आपके क्रीड़ा के मृग हैं, खेल के खिलौने हैं। तो इतना ही ख्याल रखना कि इन खिलौनों को जिताना है, किस खिलौनों को जिताना है और किस खिलौनों को हराना है, ये आप पर निर्भर करता है। और हम ये जानते हैं कि हराने पर भी, हारने वाला जो खिलौना है, हार कर भी आपको ही प्रसन्नता प्रदान करेगा, और जिताने वाले जो खिलौना है, वो जिता कर भी खिलाड़ी को ही प्रसन्न कराएगा। क्योंकि यदि प्रतिपक्ष नहीं हारेगा तो खिलाड़ी यहां प्रसन्न कैसे होगा? शतरंज में घोड़ा नहीं मरेगा, हाथी नहीं मरेंगे, राजा बंदी नहीं होगा विरोधी पक्ष का, तो खेलने का आनंद कहां होगा? असावधानी करने वाले का सेना, हाथी घोड़े सब बंदी हो जाएंगे, सावधानी करने वाला जीत जाएगा। तो आखिरी हारने वाले खिलौना भी होना चाहिए, वो टूट गया तो क्या हारेगा फिर? तो शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं, महाराज खेलना, खूब खेलना, खेलो, हम तो खिलौने हैं, आप खेलो, लेकिन इतने ख्याल रखना कि टूटे नहीं। क्योंकि खिलौने यदि टूट गए तो आपको खेल में मजा खत्म हो जाएगा। ये आपके हाथ पर है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं। तो जैसे भी खेले आप खेले, हम आपके ऊपर, आपके हाथ में नाचने वाले हैं। तो ये परमात्मा की सृष्टि उसके संकल्प मात्र से, उसी को यहां कहा स्वेच्छया सृष्टम विश्वम। परमात्मा ने अपनी इच्छा से इस सारे जगत को बनाया। जगत उत्पत्ति के बारे में चार सिद्धांत हैं, आरंभवाद, संघातवाद, परिणामवाद
और विवर्तवाद। ये हमारे भारतीय दर्शन में ये कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है तो उस उत्पत्ति में ये चार हेतु मानी जाती है, और इन चार वस्तुओं की उत्पत्ति में कोई न कोई उपादान कारण होना चाहिए। तो उपादान कारण के ये चार अवस्था हैं, एक ही उपादान कारण। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो आरंभवाद के रूप में मानते हैं, जैसे वस्त्र निर्माण करने के लिए यानी कपड़े बनाने के लिए धागों का एक धागा दूसरे धागे से जुड़ने का आरंभ होता है। धागा कपड़े का उपादान कारण है, परंतु आरंभो उपादान कारण है। सिर्फ एक धागे से कपड़ा नहीं बनता है, अनेक धागे होंगे और एक धागा दूसरे धागे से जुड़ने का क्रम होगा, और जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे, और जितने धागे के जुड़ने से एक वस्त्र तैयार होता है उतने धागे उस वस्त्र का उपादान कारण कहलाता है। लेकिन वह एक ही साथ कपड़ा नहीं बनता, ये धागे सभी एक ही साथ नहीं जुड़ते हैं। आप लोगों में से बहुत से टेक्सटाइल के होंगे जो इस सिद्धांत को जानते हो, तो एक धागा दूसरे से जुड़ता है, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ता है, तीसरे के बाद चौथा जुड़ता है, चौथे के बाद पांचवा जुड़ता है। इसको कहते हैं आरंभवाद। उपादान कारण जब कार्य को उत्पन्न करने का आरंभ करता है, तंतु धागा जब कपड़ा उत्पन्न करने के लिए परस्पर जुड़ने का क्रम आरंभ होता है, तो जितने धागे जुड़ने पर कपड़ा बनता है उतने धागे जुड़ जाने पर वह धागा उस कपड़े का उपादान कारण बनता है और उस धागों से कपड़ा कार्य उत्पन्न होता है। यह है आरंभवाद का सिद्धांत। यह आरंभवाद नैयायिकों का और वैशेषिकों का है। पूर्वीय दर्शन में वे लोग कहते हैं कि ये सारा का सारा जगत परमाणु रूप है, पहले परमाणु उपादान कारण से जगत बना है, और ईश्वर निमित्त कारण मानते हैं और परमाणु को उपादान कारण मानते हैं।

वे कुर्सी में जो जमे हुए धूल हैं, वे धूल कुर्सी में बैठने से पहले, कुर्सी में स्थिर होने से पहले कहां थे? ये अंतरिक्ष स्पेस में ही उड़ रहे थे, उसी को कहते परमाणु। वो पार्थिव है सब, कुर्सी में जो धूल जमता है, टेबल में जो धूल जमते हैं, शीशे में जो धूल जमते हैं, वे क्या है? सब पृथ्वी के कण है। वह सूक्ष्म कण है, इसीलिए अंतरिक्ष में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, स्पेस में उड़ते हैं। सृष्टि के आरंभ में ये सब विश्व इसी तरह अलग अलग परमाणुओं में बिखरा हुआ था। जब ईश्वर की इच्छा से इस सृष्टि का आरंभ हुआ, तब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ने लग गए, और जिस समय दूसरा परमाणु पहले परमाणु से जुड़ता है, तो दोनों परमाणु जुड़कर द्वेणु हो गया, और उस द्वेणु के साथ दो अणु जुड़ गए, वो द्वेणु हो गया, उसके साथ एक तीसरा जुड़ गया, त्रिश्रेणु हो गया, चौथा जुड़ गया, चतुश्रेणु हो गए। इसी प्रकार से जुड़ते जुड़ते एक पृथ्वी को बनने के लिए जितनी पार्थिव परमाणु को जुड़ने की आवश्यकता थी, वो सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़ने लग गए, तो ये पृथ्वी इस रूप में प्रकट हो गया, दिखाई पड़ा। और जब ये पृथ्वी का नाश होगा, लय होगा, तब ये पृथ्वी में जो जुड़े हुए परमाणु थे, जिस क्रम से जुड़े थे, उसी क्रम से बिखर जाएंगे, और अंतरिक्ष में, अनंत अंतरिक्ष में वो परमाणु के रूप में बिखर जाएंगे, पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल पृथ्वी के परमाणु रहेंगे। इसलिए न्याय वैशेषिक परमाणु को नित्य मानते हैं। वेदांत परमात्मा के अलावा और किसी को नित्य नहीं मानता है, परमाणु भी अनित्य मानते हैं, न्याय वैशेषिक परमाणुओं को नित्य मानते हैं। पृथ्वी अनित्य है, कार्य रूप है इसीलिए, लेकिन पृथ्वी का परमाणु नित्य है, क्योंकि कारण रूप है, कारण हमेशा नित्य होता है। महाप्रलय में भी परमाणु रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगा। जब पुनः सृष्टि करना हो, तो ईश्वर के संकल्प से परमाणु आपस में जुड़ने लग जाएंगे, फिर पृथ्वी उत्पन्न हो जाएगा। जल, तेज, वायु ये परमाणु रूप है, और आकाश भी परमाणु है। इसको कहते हैं आरंभवाद, सृष्टि होने का क्रम। एक अणु दूसरे अणु जुड़ने लग गए, उसके साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के एक ही साथ नहीं बनते हैं सृष्टि, तो उसको आरंभ कहते हैं। ये न्याय वैशेषिकों का आरंभवाद। तो बोले ईश्वर किस तरह उपादान कारण बनेगा? ईश्वर निमित्त कारण बन सकता है, उपादान कारण नहीं बन सकता। आरंभवाद के दृष्टि से उपादान कारण भिन्न और निमित्त कारण भिन्न भिन्न होना चाहिए, और कार्य को देखकर ईश्वर को सिद्ध करते हैं। लेकिन वेदांत तो इस चीज को नहीं मानता, आरंभवाद को नहीं मानता। स्वच्छ असृष्टम आविश्यम, परमात्मा एक नित्य पारमार्थिक सत्य वस्तु है, और उसी के संकल्प से सारे विश्व ब्रह्मांड एक साथ उत्पन्न हुआ है। ये उत्पन्न होने के लिए एक दूसरे जुड़ने का आरंभ नहीं है। क्या सपने में तुम एक पहाड़ देखोगे, उस पहाड़ बनाने के लिए आरंभवाद लागू होगा? है, एक पर्वत को बनने के लिए कितने परमाणु को जुड़ना पड़ेगा, और उस परमाणुओं को जुड़ने के लिए कितना समय लगेगा, तो क्या आरंभवाद होगा वहां? एक मुहूर्त मात्र में सारा पर्वत खड़ा हो गया, घर खड़ा हो गया। एक बात अलग है कि आप व्यवहार में जो घर बनाते हो, वो आरंभवाद के सिद्धांत से बनाते हो। एक ईंट के साथ दूसरा ईंट जोड़ोगे, दूसरे ईंट के साथ तीसरा ईंट जोड़ते जाओगे, और इसी तरह एक कंक्रीट के साथ दूसरा कंक्रीट होगा, एक सीमेंट होगा, वो सब होगा, वो सब मिलाओगे, तब धीरे धीरे कई वर्षों में घर बनेगा। लेकिन उसी घर को रात्रि स्वप्न में बनाना हो तो कितना समय लगेगा? क्या आरंभवाद का प्रयोग किया जाएगा वहां? सिद्धांत लागू होगा? जैसे स्वप्न में आरंभवाद के लागू हुए बिना ही कार्य प्रतीत होने लगता है, इसीलिए ताजमूल श्लोक में आगे मूल श्लोक में कहते हैं ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगर तुल्यम निजांतरगतम पश्यन आत्मनि मायया बहिर्विबोध भूतम यथा निद्राया। दृष्टांत ही वही दिया मूल श्लोक में। स्वच्छया सृष्टमाविश्य।

0: मनसि स्थितः। और उस परमात्मा को यहां स्मरण करते हैं जिसने संकल्प से सारे विश्व को बनाया और बनाकर वो अलग हो गया, तुम मरो जियो हमको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ गए? ऐसा नहीं है, सृष्टि बना दिया, जीवों को बना दिया और जाओ तुम मरो चाहे जियो, हमको कुछ लेना देना नहीं। हा हम एक जगह प्रवचन कर रहे थे तो एक पंडित जी थे, तो वहां मंदिर में शादी कराने के लिए आ गए। कहा पंडित जी शादी करा दीजिए, ये लड़का है लड़की है शादी करानी है, आप शादी करा दीजिए। तो हमारे सामने ही वो पंडित ने कहा कि अच्छा करा देते हैं। तो हमने कहा तुम इतनी सहज में शादी करा दे रहे हो, कोई तैयारी नहीं है, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। मंदिर में गए और वह परिक्रमा, मंदिर के मूर्ति के परिक्रमा किया, दोनों वर वधु लड़का और लड़की, ये माला उसके पहना दिया, उसने उसको पहना दिया। अब पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे तो मंत्र भी इतनी गलत अशुद्ध पड़ गए, तो हम सुन रहे हैं अब करें क्या। और दक्षिणा लिया और आशीर्वाद दिया, भगवान का प्रसाद दे दिया, ले जाओ सुखी रहो, भेज दिया। वो लोग मान गए कि अब शादी हो गई। तो हमने पंडित जी को कहा कि अरे पंडित जी कैसी शादी कराते हो तुम, आखिर तुम वैदिक हो सनातनी हो, शादी के एक कराने का एक नियम है, मुहूर्त होना चाहिए और जब चाहे तब शादी करा दिया, विधि है शादी की, अग्नि प्रज्वलन होना चाहिए, अग्नि नहीं है वो शादी भी क्या सनातनी शादी है। और फिर भी कहते हैं कि हम तो सनातनी है, सनातनी विधि से शादी करते हैं और अग्नि प्रज्वलन नहीं किया हो, क्या सनातनी विधि है भाई है? तो आग जलाए बिना सप्तपदी किए बिना कोई सनातनी विधि से शादी होगा, माना जाएगा उसको? तो हमने कहा ये क्या करा दिया, इससे तो अशुभ ही होगा, अमंगल होगा। बोले वो कहते हैं कि वर मरे चाहे वधु मरे, हमारा तो जेब भरे, हमको तो जेब भरने से मतलब है, वधु मरे चाहे वर मरे है? है? उन्होंने कहा दक्षिणा मिल गए, देखिए महाराज इतनी में 500 रुपया दक्षिणा मिल गया ना, हमको तो ये महत्व है। और यदि हम कहते हैं कि आज लगन नहीं है, आज मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये 500 रुपया चला जाता, अब आगे मरे चाहे जी हमको क्या लेने देना है। वो पंडित जी जैसा नहीं है परमात्मा, समझ गए ना? वो पंडित जी जैसा नहीं है कि हमने तुमको बना दिया, जाओ मरो चाहे जियो, हंसो चाहे रो, भीख मांगो चाहे राजा सम्राट बनो, ऐसा नहीं है। ये तो वैदिक सनातन, स्वेच्छया सृष्टम आविश्य, जिन जिन को जिस जिसको जिन जिन पदार्थों को बनाया उसने संकल्प के द्वारा, स्त्री बनाया चाहे पुरुष बनाया, गाय बनाया चाहे भैंस बनाया, गधा बनाया चाहे कुत्ते बनाया, राजा बनाया चाहे रंक बनाया, मालिक बनाया चाहे नौकर बनाया, घर बनाया चाहे पहाड़ बनाया, चाहे जल बनाया, चाहे हवा, जो कुछ भी बनाया उसने संकल्प से बनाया, बनाने के बाद उसी में आविष्ट होकर बैठ गया। अब बोलो इस तरह परमात्मा प्रत्येक को बनाया और प्रत्येक में आत्मा के रूप में प्रविष्ट होकर बैठा, तो तुम्हें बनाया और तुम्हारे अंदर वही परमात्मा घुसकर बैठ गया, तो अब यदि तुम रोओगे तो परमात्मा हंसेगा, तो तुम्हारा यह आक्षेप कहां तक लागू होगा? यह आक्षेप तो तब लागू होगा कि परमात्मा जीव बना दिया छोड़ दिया, तो मरो चाहे बांचो, है भीख मांगो चाहे राजा बनो, रोगी हो चाहे निरोग हो, हंसो या रो, हमको कोई मतलब नहीं, हमारा काम तो बनाना, बना दिया संकल्प कर दिया, बना दिया और छोड़ दिया और अलग बैठकर देखता, तब ये कह सकते हो कि ये भी कोई उसकी खेल हो सकती है कि बेचारे जीव रोए रहे हैं तड़प रहे हैं और वो बैठा बैठा देख रहा है और उसको खेल रहा है खेल, ये कोई खेल भी कोई खेल है। हमें याद आ गया बचपन में छोटे छोटे घर में चूहियां निकलती है ना, घूमती है ना चूहा, तो उसको पिंजड़ों में पकड़ लेते हैं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
3: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Viranminda Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge Tamil Nadu ke aur ek Nayanmariya sant ki kahani. Inka naam hai Virunmindan. तमिलनाडु के चेर प्रदेश में सेन्नगर नाम के एक कृषक परिवार में महान संत वीरमिंडर का जन्म हुआ था। यह नगर आधुनिक केरल से कुछ दूरी पर है। पेरिय पुराण के रचयिता, वैसे बता दूं पेरिय पुराण शिव की महिमा का गुणगान है। इनमें शिव के संतों का वर्णन है जो कि तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत के प्रदेश से है। पेरिय पुराण के रचयिता चिक्किलर ने वीरमिंडर की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है। विख्यात संत हैं वीरमिंडर, जिनकी शिव के पद कमलों पर दृढ़ आस्था थी। माया ममता के समस्त बंधनों को वे कठोरता से तोड़ चुके थे। प्रभु के भक्तों के प्रति उनकी प्रबल स्नेह वंदना थी। संत वीरमिंडर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। अनेक मंदिरों में प्रभु की अनंत कीर्ति का गुणगान उन्होंने किया और अंत में तिरुवारूर में आकर बस गए। तिरुवारूर तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। तिरुवारूर के त्यागराज शिव मंदिर में एक देवाचार्य मंडप है जहां शिव भक्त संत रहते थे। वीरमिंडर उन्हीं के साथ रहने लगे। उस काल की परंपरा के अनुसार तिरुवारूर के मंदिर में प्रवेश करने वालों को सर्वप्रथम मंडप में रहने वाले इन शिव भक्तों की वंदना करनी थी। उसके तत्पश्चात ही भगवान के दर्शन के लिए वो भीतर प्रवेश कर पाते थे। विख्यात भक्त कवि सुंदरमूर्ति संत या नायनमार वीरमिंडर के समकालीन थे और उन्होंने अज्ञातवश शिव भक्तों की वंदना किए बिना ही शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। भक्तों की अवहेलना देखकर सुंदर वीरमिंडर से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा और उन्होंने घोषणा कर दी। भक्तों की अवहेलना करने वाले सुंदरमूर्ति को और उन्हें परश और उनके भगवान त्रिपुरदाह सर्प को धारण करने वाले प्रभु शिव को भी संतों की मंडली से निष्कर्षित किया जाता है। ऐसे अद्भुत साहस से युक्त वीरमिंडर धन्य है। सुंदरमूर्ति नायनाथ ये मानते थे कि वे शिव भक्तों के सानिध्य के योग्य नहीं हैं और इसी कारण वो प्रभु के प्रति अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी अयोग्यता का वर्णन किया। शिव ने उनके अनुग्रह का स्वीकार किया और उन्हें देवाचार्य मंडप के संतों के समक्ष प्रस्तुत होकर कहने का साहस दिया, मैं तिल्लई चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूं से प्रारंभ होने वाली 10 पदों की कविता उन्होंने सुंदरमूर्ति से वर्णन करवाया। इन पदों में सुंदरमूर्ति ने भक्तों की नामावली की और उनके गुणों का वर्णन किया है। इन्हीं 10 पदों के आधार बनाकर चिक्किलर ने पेरिय पुराण की रचना की। वीरमिंडर के जीवन की इस घटना से एक सत्य उभरता है। वीरमिंडर आदि महान संत थे। किसी एक बात को जीवन का लक्ष्य बनाकर मार्ग में आने वाली बाधाओं विपदाओं की चिंता न किए हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। यदि प्रभु स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने लक्ष्य को त्याग करने को कहें तो भी ये ईश्वर का त्याग चाहे कर दें पर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। इन संतों के विषय में यह विचारना निरर्थक है कि इन्होंने किस बात को अपना लक्ष्य बनाया। युग बोध और जीवन दृष्टि में परिवर्तन हो गया है। जिस सिद्धांत को हम आज अत्यंत साधारण मानते हैं, हो सकता है कि कोई संत उसी को श्रेष्ठ मानकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और उसके लिए जिए या मरे। अतः लक्ष्य कौन सा है यह देखना विशेष महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, लक्ष्य सत होना चाहिए। सत यानी कि अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। संत की पहचान इसी में है कि क्या उसने अपने लक्ष्य का अंत काल तक पालन किया है या नहीं। पेरी पुराण के संतों के पुण्य चरित्रों का यह संकलन लक्ष्य के लिए जीने और प्राण उत्सर्ग करने के आधार पर किया गया है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: 900 वर्ष तक तो मुसलमानों ने राज्य किया और हमारे सारे वैदिक संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़कर फेंका, साहित्य संपदाओं को आग लगाकर जला दी। एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 900 वर्ष इतिहास है मुगल साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। और लगभग 200 वर्ष क्रिश्चियनों ने राज्य कर दी, तब बड़ा मुश्किल से भारत के सपूत वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। कुछ कोई लंगोटी के भार पर आंदोलन किया, किसी ने महात्मा गांधी जैसे लंगोटी के भार पर आंदोलन करने लग गए, सुसंगठित हुए, त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया। अभी भी इन नेताओं के चरित्रों को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि किस दिन फिर वो देश ने वो दुर्गति फिर देखने को मिलेगा, डर लगने लगता है। इनका चरित्रगत ढंग का नहीं है, तो ये इतिहास साक्षी है। तो राजा को बहुत सावधान होना पड़ता है। बाबा रूपक है उस राजा, एक राजा सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए वह क्या नहीं करता। इसी तरह एक भक्त को सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसको सुस्थिर राजलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भौतिक राज्य लक्ष्मी और आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी, यही तो अंतर है। भक्त की राज्य लक्ष्मी आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी है। भक्त भौतिक राज्य लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी चाहिए। लेकिन चाहे आध्यात्मिक राज्य लक्ष्मी प्राप्त करनी हो चाहे भौतिक राज्य, शत्रु को तो जीतना पड़ेगा पड़ेगा। ये बात इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य जी जिस समय इस श्लोक की रचना करते हैं, भगवान सर्वज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण गीता में अपने प्रिय सखा, प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। कामे सक्रोधे सरजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम इह वैरणम। ये अर्जुन तुम्हारे जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु दुशासन दुर्योधन आदि हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े शत्रु नहीं है। दुशासन दुर्योधन आदियों से तुमको इतनी ज्यादा खतरा नहीं है जितनी कि तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये तुम्हारे जो शत्रु हैं तुम्हारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे घात लगाकर तुम्हारे साम्राज्य को छीनना चाहते हैं। और ये शत्रु यदि प्रबल होंगे, इन पर तुम विजयश्री प्राप्त नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य रूपी जीवन को, जीवन रूपी साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। तस्मात्म इंद्रियान्यादो नियम्य भरतर्षभ, इसलिए हे अर्जुन, शत्रु को जीतना हो तो शत्रु के बेस कैंप का पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे हवा में गोली चलाकर शत्रु परास्त नहीं होंगे, समझे नहीं, आपस में गोली चलाकर शत्रु परास्त होंगे। शत्रु जहां रहकर योजना बना रहे हैं उस ठिकाने का तहस नहस करना चाहिए, उस ठिकाने को अपने कब्जे में लो, तब शत्रु कमजोर होंगे। महाराज कौन से ठिकाना है, कहां रहते हैं ये शत्रु? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम है, तीन ठिकाने हैं इनके, बाहर इंद्रियों ठिकाना, इंद्रियों में रहकर तुम्हें घात करते हैं, उससे अंदर मन में रहकर तुम्हारा घात करते हैं ये, उसके अंदर बुद्धि में रहकर तुम्हारा घात करते हैं। कैसे घात करते हैं महाराज, इनके घात करने के सिस्टम गीता में बहुत सुंदर ढंग से प्रक्रियागत बता दिया है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, ये देखो उनके घात करने के सिस्टम क्या है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर गंधा निवासयात बाहुर नाव मीमां वसा, ये उनके घात करने की प्रक्रिया है। ये शत्रु पहले तो इंद्रियों को विषय में भेज देंगे और जब विषय के प्रति इंद्रियां पूरी तरह आसक्त हो जाएंगे तो इंद्रिय के पीछे पीछे मन भी जाएगा और मन के पीछे पीछे बुद्धि भी जाएगी। जब इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों विषय में लग जाएंगे तो ये काम और क्रोध रूपी शत्रु आत्मा रूपी राजा को उसी के साथ खींचकर विषय में ले जाकर फंसा देंगे। और आत्मा रूपी राजा मैं विषय में फंस गया कि ये बोध उसको नहीं हो पाता है, आह क्या मजा आ गया है, बारिश हो रही हो, कॉफी और गरम गरम पकौड़ा खाते समय में यही कहेगा कि क्या मजा आ गया है, और दो पकौड़े की जगह चार पकौड़े खा गया, चार की जगह आठ खा गया, मजा आ गया। और शत्रु कहता है इसी के लिए तो ये सब तैयारी किया है मूर्ख, इसी के लिए तो ये तैयारी किया है। अब जब गरम कॉफी और चार के जगह आठ पकोड़े खा गया, तेल भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नमक भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कॉफी भी है उसमें जो कैफीन होता है कॉफी में वो भी हाई प्रेशर के लिए है, ये सब वातावरण तैयार किया किसने, काम ने, इसको पछाड़ना है, दूसरे उपाय से तो पछाड़ नहीं पाएंगे, इस तरह पछाड़ देंगे। तब खाने के बाद टर्न खाया तो दूसरे दिन सिर नहीं उठा पा रहा है, क्या हुआ महाराज, क्या करे, चक्कर आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पहुंच गया डॉक्टर के यहां, महाराज डॉक्टर ने जब आला लगाकर देखी प्रेशर हाई हो चुका है। अरे तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, कम करो। क्या खाया था कल, पूछेगा डॉक्टर, क्या बताओगे? नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल थोड़ा बारिश ज्यादा भीज गया था, घर में जो है पकोड़े थे तो कॉफी और पकोड़े खाने की इच्छा हुई, थोड़ा दो चार पकोड़े ज्यादा ही खा लिया था। फंस गए भाई है? अब न जप कर पाओगे, न तप कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे। पछाड़ दिया ना है, परास्त कर दिया ना। ये देख लो, पहले तो शत्रु क्या है ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु रहते कहां हैं ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु किस तरह काम करके हमको परास्त करते हैं उस सिस्टम को भी जानना जरूरी है। तो इस सारी प्रक्रियाओं को तुम जानोगे तब तो इन शत्रुओं को जीतने में तुम सक्षम होगे, अन्यथा जीवन तो कितनी जीवन हमारा इसी तरह परास्त होकर बर्बाद हुआ है। यदि बर्बाद न होता तो आज तक जीव बनकर न भटकते। जीवन सार्थक होता तो अभी तक जीव बनकर भटकना पड़ता है? बड़ा सुंदर एक श्लोक रूपक के रूप में है, आरूढ़ भक्ति गुण। गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी, डोरी, समझे नहीं? गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में रस्सी, डोरी। हाँ, अब चाप शब्द का अर्थ होता है धनु, समझे नहीं? धनुष, धनुष बाण, और उस धनुष में डोरी रस्सी चढ़ाई जाती है। कैसे डोरी? बोले आरूढ़ डोरी, आरूढ़ गुण कुंचित। जब डोरी कसी जाती है तब धनुष बैंड होकर झुकता है, और डोरी खोल दो तो वह सीधा ही रहता है, लकड़ी की तरह, डंडे की तरह। जब एक छड़े में डोरी बांधो जोर से और दूसरे कोने में, दोनों कोने को डोरी से कसोगे तो वह बैंड होकर तो डंडा धनु झुकेगा। राजा लोग या फिर योद्धा लोग जब लड़ने के लिए तैयार होकर चलते हैं तो सबसे पहले प्रत्यंचा डोरी चढ़ाते हैं, और जब विश्राम होता है तो डोरी खोल के रखते हैं। जब युद्ध विराम होता है ना तो सेना लोग डोरी खोल देते हैं, निकाल देते हैं, और जब युद्ध में जाने की तैयारी करनी होती है तो फिर डोरी चढ़ाते हैं, बांधते हैं, कसते हैं। तो तैयारी पूर्वक अवस्था को यहां आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचापम, भावना रूपी धनुष बाण, भावना माने ध्यान, ध्यान रूपी धनुष में भक्ति रूपी डोरी चढ़ा दिया गया है। ये शत्रु जीतने की तैयारी है, ध्यान देना, क्योंकि शत्रु जीतना है हमें। शत्रु क्यों जीतना है? सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्त करना है। शत्रुओं ने जब तक शत्रुओं को नहीं जीतेंगे तब तक हमारी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं होगी। ये दिखावा जो भक्ति से तुम्हारी मुक्ति नित्य नहीं होगी है, यहां तो नित्य मुक्ति मुक्त चाहिए, हम नित्य मुक्तता, अन्यथा तुम मुक्त भी होगे तो फिर जय विजय की तरह पतित होना पड़ेगा, नित्य नहीं होगा ना वो मुक्ति, वहां पर भी कुछ न कुछ गलती करोगे, सुस्थिर न होकर अस्थिर हो गए। क्या था मुक्ति अस्थिर होने में हेतु क्या था? द्वैत दृष्टि, प्रसंग आप लोगों ने सुना है कई बार, भेद बुद्धि, भगवान के अनन्य सेवक जय विजय द्वारपाल हो गए, सामीप्य मुक्ति प्राप्त किया, सालोक्य नहीं सामीप्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है, सालोक्य का मतलब होता है भारत के किसी कोने में तुम पैदा हो जाओ तो ये सालोक्य हो गया, है ना, सामीप्य हो गया, अरे भाई राष्ट्रपति के आसपास में कहीं घर बना के रह गए, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में है, और इसलिए सामीप्य हो गया, उनकी सामीप्यता। इसी तरह वैकुंठ इतना विशाल लोक है, उस किसी लोक के वैकुंठ के किसी कोने में पैदा होना तो सालोक्य हो गया, लेकिन भगवान नारायण के नजदीक ही तुमको कुटिया बनाने को मिल जाए हैं? क्या गौरव है, सामीप्य सारूप्य सायुज्य देख लो, सायुज्य का मतलब होता है उसके काम में आना, उसके सेवक बनना, उससे अभिन्न होकर रहना, समझे कि नहीं, सायुज्य, सामीप्य और सायुज्य में बड़ा अंतर है, सामीप्य वाला अंतरंग में नहीं जा सकता है, बहिरंग में रह सकता है, बाह्य कक्ष में रहेगा लेकिन अंतरंग नहीं जाएगा, समझे कि नहीं बोलो। तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हारे बेडरूम में जा सकता है, हैं? बोलो, जा सकता है बेडरूम में मोटरसाइकिल, लेकिन तुम्हारा चश्मा बेडरूम में जा सकता है कि नहीं, तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारा चश्मा जा सकता है कि नहीं बोलो, देखो अंतरंग हो गया ना, मोटरसाइकिल बहिरंग हो गया, भक्तों के ऐसी कैटेगरी वैष्णवों ने स्वीकार की है, कुछ मुक्ति ऐसे है कि उसके लोक में जन्म ले पहुंच गए तो वही मुक्ति है, बड़ा आनंद है वो लोक में, लोक में नहीं है उससे और ज्यादा कृपा हो गई है उसके महल में आसपास में, और उससे और ज्यादा मिल गई तो सामीप्य और नजदीक, उसे और कृपा हुई तो सारूप्य, जब तक सारूप्य भक्ति नहीं मिलती है तब तक जो है वह सुस्थिर राजलक्ष्मी नहीं होता है, सुस्थिर नहीं होता वह मुक्ति, सुस्थिर नहीं होता। अब यह प्रसंग यहां भगवान शंकराचार्य जी शत्रु को जीतकर अपना साम्राज्य प्राप्त करना है उसके लिए साधन दो वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग किया, भावना को चाप के रूप में, भावना माने ध्यान, को धनुष बाण के रूप में, और दृढ़ भक्ति को मजबूत रस्सी के रूप में। वो रस्सी से युद्ध नहीं जीता जा सकता जिस रस्सी से धनुष बाण को तैयार किया और तीर चढ़ाकर जब खींचते ही टूट जाए, वो तो कमजोर रस्सी है। और तीर छोड़ने से पहले तार खींचना पड़ेगा, खींचते ही रस्सी टूट जाए तो लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा ना। तो डोरी कैसी चाहिए? बोले सुदृढ़, आरूढ़ भक्ति, गुण कुंचित, कुंचित माने खींचना, गुण माने रस्सी, भक्ति को रस्सी बनाओ, भावचाप युक्त ही। तो हो गया धनुष तैयार, डोरी और धनुष को, बाण को, धनुष को चढ़ा दी तो धनुष तो तैयार हो गया। तो बाण क्या है भाई? अब तीर चाहिए कि नहीं? धनुष तो हो गया, लक्ष्य भेदन तो धनुष नहीं करेगा ना, लक्ष्य भेदन तो तीर बाण, धनुष बाण बोलते हैं ना। तो बाण चाहिए कि नहीं? तीर चाहिए। क्या है तीर? शिवस्मरण, नित्य निरंतर शिव का स्मरण ही। शिव भक्ति रस्सी है, शिव ध्यान धनु है, और शिव स्मरण क्या है? बाण है। शिवस्मरण बाण गणे ही, धनुष एक हो तो भी चलेगा, तीर एक से काम नहीं चलता, तीर ज्यादा चाहिए। इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया है। शिवस्मरण बार बार करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार शिव स्मरण करो, कभी भूलना नहीं, कभी विस्मरण न हो, इसी को आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। सोते समय भी स्मरण करो, जगते समय भी स्मरण करो, चलते समय भी स्मरण करो, बैठते समय भी स्मरण करो। तो यही हो गए बाण, शिव स्मरण बाण। कैसे? बोले अमोघई, शिव स्मरण ऐसा करो कि वह व्यर्थ न जाए। शिव स्मरण को मनोरंजन नहीं मान लेना, वो अमोघई शब्द से है। शिव स्मरण मनोरंजन नहीं मानना, अमोघई वो तो जीवन के कष्ट से कष्टतम अवस्था में भी उसको नहीं छोड़ना है, तभी जो शिव स्मरण अमोघ बाण होगा। अमोघ बाण का अर्थ होता है लक्ष्य भेदन करने के बाद वह लक्ष्य को भेदन किए बिना व्यर्थ न जाए। धनुष में चढ़ाकर जब उसका भेदन करते हैं तो लक्ष्य भेदन न किए बिना वह बेकार नहीं जाता, उसको अमोघ बोलते हैं। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचाप युक्त ही शिवस्मरण बाण गणेर मोघई। महाराज, तुम्हारी तैयारी तो ऐसे है कि बड़े भारी शत्रुओं से लड़ना है। बोले हां, निर्जित्य किल विष रिपुन, किल विष ही रिपु है तुम्हारे, किल विष माने पाप, पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है बोलो? देखो, भक्ति सिद्धांत में तुम जो कह रहे हो वो बड़ा पाप हो सकता है, ज्ञान सिद्धांत में भगवान को भूल जाना पाप नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान सिद्धांत में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने को भूल जाना। भगवान को भूल जाना इतने ज्यादा घातक नहीं है, नुकसान नहीं है। अपने को, खुद को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। को हम, ये तुमको ही पता नहीं है, अपने ही बारे में तुमको जानकारी नहीं है। और सनस सुजातीय दर्शन में तो भगवान सनस सुजात ने धृतराष्ट्र को कहा, किम तेन न कृतम पापम। ये सनस सुजातीय दर्शन का श्लोक है। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिण। उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया दुनिया में, जीवन में? किस चोर ने? आत्मा अपहरण, अनात्मा शरीर को आत्मा मान लिया, अनात्मा प्राण को आत्मा मान लिया, अनात्मा इंद्रियों को आत्मा मान लिया, अनात्मा मन बुद्धियों को आत्मा मान लिया। इससे बढ़कर किम तेन न कृतम पापम, सबसे बड़ा पाप तो यही है। और जो पाप है वो तो बहुत क्षुद्र पाप है, बच्चे कच्चे हैं पाप के। सबसे बड़ा पाप तो यहीं से शुरू होता है, अकर्ता को कर्ता बता देना, अभोक्ता को भोक्ता बता देना, ज्ञान स्वरूप को अज्ञानी मान लेना, अजन्मा को सजन्मा मानना, ये कम पाप है? ये कोई छोटे मोटे पाप है? ये उसी के तरफ यह संकेत कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य। किल विषय रिपुन, पाप ही शत्रु है। हमारा शत्रु हमारे ही पाप। अब पाप को पैदा किया किसने, बोलो? पाप के बाप कौन है? तुम खुद हो। अध्यात्म में दूसरे के पाप दूसरों को कष्ट नहीं देता। मेरा पाप तुमको कष्ट देने जाएगा? बोलो। मैंने जो पाप किए, मेरा पाप तुमको कष्ट देने के लिए नहीं जाएगा। तुमको कष्ट कौन देता है? तो तुम्हारा ही पाप, तुमने जो किए वो पाप है। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया वर्षों से, अब तुम यदि कोई यदि कहे कि मैं एक टाणो खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, नित्य गंगा स्नान करूंगा, चलो नित्य न करो तो 21 तारीख को तो कर लो नर्मदा स्नान। 21 तारीख को नर्मदा स्नान में जा रहे हैं ना कुछ लोग, है? सुना है? तो कोई नियम बना लेता है कि रोज सुबह 4 बजे उठना है, और 4 बजे उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 घंटा मुझे रोज जप करना है, समझे? 4 बजे उठकर जप शुरू करेगा तो कब तक? 7 बजे तक। 7 बजे तक जप करो, फिर 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम में आ जाओ, ठीक है कि नहीं? बोलो, करना क्या है और तुमने? बोलो, सुबह सुबह करना क्या है? 4 बजे उठो, पट्टा ना धोकर आसन लगा के बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय जब शुरू कर दो। जब तुम ऐसा संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, शाम को 4 बजे उठने का संकल्प करके अलार्म लगाकर सोते हो, तो ये पता चल जाता है किसको, ये तुम्हारे संकल्प का पता किसको चलता है, तुम्हारे पापों को, पापों को पता लग जाता है। ये षड्यंत्र कर रहा है, 4 बजे उठूंगा कहता है, स्नान करूंगा कहता है, जप करूंगा कहता है, मर गए भाई। अब तो हम तो मर गए, बिना मौत मर गए, कौन पाप। तब वो लोग, तुम तो सो जाते हो संकल्प करके, वो मीटिंग करने लगते हैं। ये सच्ची बात है, मैंने गप नहीं किया है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है। तब वे लोग मीटिंग करने लग जाते हैं कि इसको इसके संकल्प अनुसार, इसकी योजना के अनुसार काम करने नहीं देना है, नहीं तो हमारा सत्यानाश करेगा ये, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा ये। तब क्या करना है, तो एक बोलता है, मुझे आइडिया आ गया भाई। क्या? जब वो अलार्म लगाकर सिरहाने में रखेगा घड़ी, जब घड़ी का अलार्म बजेगा, तो उसके हाथ में जाकर मैं बैठूं और फट वो अलार्म को बंद करने के लिए उसके हाथ को मैं चला दूंगा, चिंता नहीं करो। तो वो हाथ में बैठता है, कहते हैं ठीक 4 बजे के आसपास में आकर हाथ में बैठ जाता है योजना बनाकर, तो प्रे अलार्म बज गया, टू टू टू टू, सोए सोए हाथ बंद करके फिर रजाई ताल ली। क्या मजा, पाप बड़े खुश हो जाते, वास जब वास है, तुमने काम की बेटा, अब आराम से बैठेंगे भाई। और 7 बजे के प्रेमपुरी जाने की जगह 9 बजे तक सो गया, राज किसका हुआ बोलो, पापों का राज हुआ कि नहीं, जीत गए कौन। ये दृष्टांत से तुम, ये महाभारत में स्पष्ट लिखा है, करते यही है कौन, तुम्हारे किलबिस, तुम्हारे पाप षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि ये नियम बनाकर करने लग जाएगा तो हमारा तो नाश हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो बड़ी सावधानी, दृढ़ता चाहिए हो, छोटे मोटे हथियार से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बड़े दृढ़ हथियार की तैयारी कर रहे हैं।
6: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
7: और उनकी स्तुति करने से हमें क्या लाभ हुआ, हम वो परमात्मा जिसे मन वाणी भी नहीं जान सकते, उसे ये मन वाणी से जानने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। तो ऐसी अतद व्यावृत्ति से श्रुति बता के भी चकित हो जाती है, अभी इतना सुनने के बाद हम चकित नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, वो वाणी से भी निर्देशित नहीं है फिर भी बोलने की चेष्टा, ये हमें चकित नहीं करेगी तो क्या करेगी। और जीवन में चकित होने वाला इससे ज्यादा क्या है, अरे भाई आप यहां देखने को आइए, आप हैरान हो जाएंगे, इतना सुंदर दृश्य है, आप हैरान हो जाएंगे, इतना सुंदर श्रव्य है, इतना सुंदर है, इससे ज्यादा हो सकता है, उसे बताना, जो आपको ऐसा बताए ना उसे बताना कि भाई देखो उसे उसे आप जहत अजहत समझाने में शुरू हो जाएंगे ना, तभी वो आपको पैर छू के निकल जाएगा। बोले कि मैं जो इतना सुना रहा हूं उससे ज्यादा चकित करने वाला है तेरा विषय। बोले वो उतना सुनने के लिए रहेगा, ही वोंट बी देयर, और आपके आपको समय मिल जाएगा उसका नाम लेने के लिए। हाँ, ये समझाना शुरू ही कर देना, वो चला जाएगा अपने आप, और उसका कुछ नसीब होगा तो बैठ के सुनेगा और पार लग जाएगा। तो बोले श्रुति भी अभेद भाव से महिमा की स्तुति नहीं कर सकते हैं, हे परमात्मा स कस्य स्तोतव्यः कतिविद गुण कस्य विषयः पदे तू अर्वाचीने पतति न मनः कस्य वचः। हे परमात्मा, आप किससे जाने जा सकते हैं कि आप कितने गुण वाले हैं? तो भी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आपके साकार स्वरूप में, देखिए आप बहुत मजे की बात है, यहाँ बड़ी बड़ी अतत की बात की, सब का बात कर दिया और अब कहते हैं कि भाई करना क्या है। भाई ये परमात्मा, ये अतत व्यावृत्ति से मिले हुई जो अहम ब्रह्मास्मि की ये जो भावना है, ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति कहाँ टिक सकती है? भाई आपके जो साकार स्वरूप जो है उसी में ये अनुभूति को मैं रख सकता हूँ। देखिए आपके पास कोई वैल्यूएबल कोई वस्तु होगी, कोई ऐसे पेपर्स होंगे या आपके कोई भी चीज होगी जो बहुत ही वैल्यू रखती है, आपके पास जो भी आपका ज्वेलरी होगा वो कहाँ रखेंगे आप? इधर उधर तो नहीं रखेंगे ना, रखेंगे कहाँ? कोई सेफ में रखेंगे ना, जो चीज बहुत महत्व की है उसे सेफ में रखी जाती है। तो ये अतत व्यावृत्ति से ये परमात्मा, अगर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ये परमात्मा को धारण हो गए भीतर, तो उसे कहाँ रखना चाहिए, उसकी जगह क्या है, सेफेस्ट जगह कहाँ है? तो बोले कि परमात्मा ऐसे आपके गुण को न जानने वाले आपके साकार स्वरूप में किसके मन और वाणी प्रवेश नहीं करते। यानी क्या कहना चाहते हैं कि मन और वाणी एट द मोस्ट प्रवेश कर सकते हैं तो आपके साकार स्वरूप में, यानी परमात्मा के साकार स्वरूप के बिना आपकी मन और वाणी को कहीं भी प्रवेश करने नहीं दीजिए। बहुत बड़ा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि अतत जागृति से जो परमात्मा आपने प्राप्त किया है, जो अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति क्षण के लिए भी आपने सुनी, कान में गई, और जो थोड़ा भी आश्चर्य हुआ वो आश्चर्य को साकार में संजो के रखिए। वहां वो इधर से उधर नहीं हिलेगा। बाकी ये शरीर मन बुद्धि के संघात में साथ को लेके अहम बुद्धि से मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ ऐसा विचार किया तो वो अहम वृत्ति तिरोभूत हो जाती है, वो चली जाती है। एक बूंद पानी का आपके हाथ में आ गया तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे संभालने के लिए जितना जल्दी हो सके आप समुद्र में जाके डाल के आइए वो बूंद को, तो ही वो बच सकेगा, नहीं तो वो बूंद को बचने की कोई शक्यता नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं कि मैं इतना जानता हूं तो भी आपके साकार स्वरूप में क्यों अनुग्रहित हूं, मैं क्यों आनंदित हो रहा हूं आपके साकार स्वरूप में मेरे मन और बुद्धि को, कि ये जानने के बाद मन और बुद्धि तो अपना कार्य करने ही वाले हैं, क्योंकि प्रारब्ध तक जब तक शरीर नहीं खत्म होगा मन और बुद्धि अपना कार्य करते रहेंगे, और जितना आप ब्रह्म को जानेंगे मन और बुद्धि इतने ही परेशान आपको करेंगे। वो कैसे भी करके वो परमात्मा मन से जानने वाला है ऐसा आपको मन बताता ही रहेगा, और ऐसा न हो इसीलिए जब मैं शांत हूं तब आपके साकार स्वरूप में मन इधर उधर भटकता है तो तुरंत उसको साकार पकड़ा देता हूं कि भाई तुझे देखना ही है ना, रूप देखना ही है ना, आंख मचलती है कि रूप को देखो, यहां परमात्मा तुझे दिखा दूंगा, तुझे रूप देखना ही है तो यही रूप देख, दिस इज दी ओनली रूप यू हैव नो चॉइस, यही देखो। तुझे सुनना ही है परमात्मा का नाम ही सुनो, तुझे बोलना ही है परमात्मा के ही नाम बोलो या चुप रहो, वाणी को बोल देना। तो इसीलिए यहां कह दिया है कि जानने के बाद भी मेरे मन और मेरी बुद्धि ऐसे ही सात्विक रहे जब तक, ये देखिए ये अदृढ़ अपरोक्षानुभूति होती है, पहले थोड़ी देर के लिए लग जाता है, संतों के सानिध्य के साथ लग जाता है, परमात्मा की मूर्ति के सानिध्य के साथ लग जाता है कि मैं ये परमात्मा हूं, फिर छूट जाता है। नहीं हम प्रपंच शुरू कर देते हैं, कहां घुस जाता है हम लोग, हमें आश्चर्य होता है कि इतना सब सुनने के बाद मैं कैसे ये सोचने लगी, वो मुझे पता नहीं है ये मन ये काम कर रहा है। तो ये मन कहां से आ जाता है पता नहीं लगता, इसीलिए ऐसा मत सोच लेना, गलती मत करना कि एक बार ये सुन लिया मैं ब्रह्म हो गई तो सब कुछ हो गया। इतनी जल्दी होता होता तो करोड़ों साल से ये भगवद गीता, ये उपनिषद पर यहाँ से, ये मंच से, और ऐसे आश्रमों तो कितने हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, वहां से सब वक्ता कितने घंटों तक बोलते रहते हैं, तो पोर्शन खत्म क्यों नहीं होता है? हाँ, पीएचडी और एमबीए का भी पोर्शन एक साल में या पांच साल में खत्म होगा, ये पोर्शन हजारों साल से चल रहा है, ये बोलना खत्म क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि इतना सरल नहीं है और इतना क्लिष्ट भी नहीं है। करना क्या है, हमारी जो अहम की वृत्ति जो है उसे हमें तोड़ते रहना है। तो मन और वाणी भी नहीं प्रवेश सकते। अब आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, श्लोक नंबर 3, जिसके पास पुस्तक है आप उसका गान कीजिए, आप गाइए, सब लोग गाइए साथ में। मधुस्फीता वाचः

बहुत सुंदर बात की है। हे प्रभु, अभी परमात्मा की वाणी को क्या कह रहे हैं पुष्पदंत जी। अब देखिए, जिसे अभी आप सोचिए कि जिसे मन और वाणी से भी नहीं कहा जाता, वो उनकी खुद की भी क्या कोई वाणी हो सकती है? तो यहां कैसे कहा, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितः तवतः। वे पूरा भाषांतर देख लेंगे, फिर सोचेंगे कि ऐसा क्यों कहा। और परमात्मा की वाणी को मधुर कहा, और वाणी से नहीं जान सकते तो परमात्मा की कुछ वाणी भी नहीं हो सकती, तो ऐसा क्यों कहा? वो वाणी है तो कौन सी है? अब जानिए कि वो वाणी कौन सी है परमात्मा की। कहते हैं, हे प्रभु, मधु जैसी मधुर और परम अमृत समान अलंकार कृत आपकी वाणी कैसी है? तो कहा, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितवतः। ऐसी वाणी को निर्मितवतः, आपकी वाणी वो नहीं है, आप वो वाणी को निर्मित कर रहे हो। अब ये क्या कहा है, परमात्मा कौन सी वाणी को निर्मित करते हैं? वाणी का विषय नहीं है, वो वाणी कैसे निर्मित कर सकते हैं? तो यहां कौन सी वाणी की बात की है? तो यहां वेद वाणी की बात की है। वेद वाणी यानी ये जो उपनिषदों में जो ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म का विशेषण विशेष रूप से ब्रह्म का कथन किया गया है, वो वाणी को हम क्या कहते हैं? अपौरुषेय वाणी जो है, वो वेद वाणी के कर्ता हे शिव आप है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितव्यः परमात्मा। ये वाणी जो है ना, तो वो परमात्मा के निश्वास रूप है, उसमें उनका कर्तृत्व नहीं है, कोई करने का भाव नहीं है। निश्वास, निश्वसितव्यम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितव्यम याने, देखिए निश्वास क्यों कहा है परमात्मा की वाणी को? या नाक में से निकलती है वाणी क्या परमात्मा की, और उसमें से आवाज आता है तो बोले नहीं, आप श्वास ले रहे हैं, आप यहां बैठे, प्रवचन शुरू हुआ और 8 और 14 हुई है, तब तक आपने कितनी बार श्वास अंदर लिया और बाहर निकाला? कितनी बार लिया या नहीं लिया? कितनी बार निकाला और लिया? आपके खुद के श्वास है, आपको पता ही होना चाहिए। हाँ हाँ, पता ही नहीं है, मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा यहां बैठे हुए कितने को याद आया था? हाँ, यानी तो भी श्वास चल रहा था ना? तो बोले हाँ चल ही रहा है, क्या बोलते आप, चल ही रहा है, पता ही नहीं लगा। यानी क्या, बहुत ही सहज, अत्यंत सहज। देखिए ये बड़ी क्रिया हो रही है, श्वास का जाना, श्वास का निकलना, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये।